0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.

चलो गुड मॉर्निंग तो आपकी हो गई है, लेकिन कोई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, नमस्ते सत श्री अकाल वणकम अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और सोचा कि सुबह सुबह के एक अच्छी पॉजिटिव कहानी के साथ में क्यों ना शुरू करें हमारा दिन। एंड इट्स नॉट प्रीची, और ज्ञान देने का कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, बस कहीं ना कहीं मम्मी की कुछ बातें होती है ना मुझे याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर मम्मी जो होती है ना कुछ सीख ना अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताती है। जैसे बचपन में मैं जब छोटी थी एंड आई यूज टू आई वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, और एक टॉय था जिसमें बैटरीज की ज़रूरत थी, और जहाँ पर मी द क्यूरियस लिटिल आफरीन 6 ईयर ओल्ड बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव साइज समझने की कोशिश कर रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू पुट दैट बैटरी इन अ टॉय। तो बस मम्मी ने तभी एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे समझाई थी, और मुझे वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रही है, जो कुछ इस तरह से है कि बैटरी में अक्सर आप देखते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, और ऐसे ही शी एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि यार इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है आफरीन, कि हर कोई चीज़ चलाने के लिए आपको वो बैटरी में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, नेगेटिव्स एज वेल पॉजिटिव्स एज वेल। वैसे ही इंसानों में भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती है। अब ये अपने ऊपर है आफरीन कि किस तरह से तुम्हें वो इंसान को देखना है। कभी कभार होता है कि किसी इंसान के सिर्फ नेगेटिव साइंस हमारे सामने दिख कर आते हैं, उभर कर आते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गलत है, नहीं, हर एक इंसान में पॉजिटिव साइड भी होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ की पॉजिटिविटी इज़ ऑल अबाउट, कि भाई लोगों को नज़रिए से जब देखते हैं एक अच्छे नज़रिए से, तब हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है और ज़िंदगी इस तरह से आसान लगने लगती है। बस मम्मी की ये छोटी सी बात सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर कि ये बात आपको भी कहीं ना कहीं याद ज़रूर आएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
3: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन,
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
3: रॉन्ग ले रहा हूँ
4: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
3: चल जा, चल काम कर, चल हट।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल, चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

देखिए, हम रोज कम्यूट करते हुए कितनी चीजें बस पास कर देते हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ से गुजरते हैं, बस स्टेशन, बस स्टॉप, और वो डेली के लोग, बट कभी सोचा है क्या ये एक स्टेशन एक्चुअली एक दिन में कितने लोगों का मूवमेंट जो है मैनेज करता होगा? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और आज ना थोड़ा कतर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर्स में समझते हैं, बिकॉज जब नंबर्स सामने आते हैं ना, तब यू रियलाइज द स्केल ऑफ प्लानिंग हैपनिंग बिहाइंड आवर एवरीडे कम्यूट. फॉर एग्जांपल, अल वकरा बस स्टेशन को देख लीजिए. एक दिन में अराउंड 11,000 पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी, 50 बसेस एवरी आवर, 9 रूट्स कनेक्टिंग 9 डिफरेंट डेस्टिनेशंस. और इंटरेस्टिंगली, अल वकरा का पार्क एंड राइड अल वकरा मेट्रो स्टेशन के एडजेसेंट है. सो बस मेट्रो और प्राइवेट कार्स को एक कनेक्टेड सिस्टम में साथ में लाने की ये प्लानिंग है. एंड हियर्स अ बिगर पिक्चर. कतर का पब्लिक बस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम सिर्फ अल वकरा नहीं, 8 मेजर बस स्टेशंस, 4 बस डेपो, 2,300 प्लस बस स्टॉप्स और 650 प्लस इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क है. सो वेल, नेक्स्ट टाइम जब हम किसी बस स्टेशंस को कैजुअली वी जस्ट क्रॉस, जस्ट रिमेम्बर, जो हम सिर्फ एक बिल्डिंग और कुछ बसेस दिखती है हमें, बिहाइंड दैट इज एक्चुअली अ मैसिव कोरियोग्राफी ऑफ पीपल, रूट्स एंड टेक्नोलॉजी की विच कीप्स आवर कतर एक्चुअली मूविंग. है ना, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

इतने सालों से ये गाना सुन रहे हैं लेकिन कभी समझ ही नहीं आया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और एक मजेदार बॉलीवुड ट्रिविया लेकर आई हूँ एक गाने को लेकर जो कुछ ऐसा है। ये गाना तकरीबन 20 साल से जो हम सुन रहे हैं लिरिक्स आज तक पूरे समझ नहीं आए। वेल यस, जब भी मैट का ये गाना मौजा ही मौजा, इस गाने के बीच जो कुछ लाइन्स आती है कभी नोटिस किया है कि वो पंजाबी है ही नहीं। वेल यस, ये एक ट्रेडिशनल आसामीज नर्सरी राइम है एक्चुअली। टाटे बोहे बोहिरार दे, इसका मतलब क्या है ये भी मैं बताती हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट, इट्स वेरी क्यूट। आसाम में बच्चे बारिश के दिनों में ये राइम गाते हैं कि बेसिकली सूरज को बुलाने के लिए कि क्लाउड्स हटाओ, थोड़ी सनशाइन दो, हमें बाहर जाकर खेलना है। एंड यर्स द बॉलीवुड कनेक्शन हाउ इट केम यर, बिकॉज ये गाने के जो सॉन्ग अरेंजर हैं, ठीक है, ध्रुवा ज्योति फुकान, ये एक आसामीज है। एंड दैट्स हाउ एक पंजाबी गाने में इतने सालों से एक आसामीज राइम छुपी हुई है ये हमें पता ही नहीं था। तो चलिए अब ये गाना सुन लीजिए एंड नाउ यू कैन लिसन टू द आसामीज लिरिक्स एज वेल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: decades of excellence in Qatar. Salman Khan अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
1: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: क्यों।
1: देखिए ये वर्ल्ड कप और कतर, ये कॉम्बिनेशन ना काफी फेमिलियर होने लगा है अब। लेकिन अगला वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इस बार गोल्स नहीं बास्केट्स काउंट होने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड यस, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के लिए दोहा के चार वेन्यूज ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गए हैं अब। लुसेल अरेना, अल अतिया अरेना, दोहेल अरेना एंड अल जनूब अरेना। टूर्नामेंट होगा 27 से लेकर 12 सितंबर 2027 की बात कर रही हूँ। 32 टीम्स होने वाली है टोटल 92 गेम्स के साथ। बट हियर्स अ फैसिनेटिंग बिट, अल जनूब स्टेडियम जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस हुए थे उसको ट्रांसफॉर्म करके एनक्लोज्ड 8200 सीट बास्केटबॉल अरेना बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार एक बास्केटबॉल मैच एक कन्वर्टेड फुटबॉल स्टेडियम में होने वाला है। वाओ। और हम दोहा वालों के लिए बोनस, फीफा के अकॉर्डिंग सारे फोर वेन्यूज रफली 30 मिनट्स के अंदर ही है, मतलब एक ही सिटी में पूरा वर्ल्ड कप। ये तो हमने पहले भी देखा है ना। इनफैक्ट दिस विल बी द लार्जेस्ट फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एडिशन एवर होस्टेड इन अ सिंगल सिटी, एंड फाइनल होने वाला है लुसेल अरेना में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कतर क्लियरली कह रहा है स्पोर्ट्स का जॉनर बदल सकता है, स्टेज नहीं और कंट्री भी बिल्कुल नहीं। माइक से दिल तक आप श्रीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: मिर्ची।
3: हेलो
4: हेलो।
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासेस, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे। देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: रेडियो
5: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Ready?
7: Ready!
6: To learn?
7: Yes!
6: To play?
7: Absolutely!
6: To grow?
7: With Maserati!
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
9: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
10: She can read your mind. She will blow your mind.
0: She is coming for the very first time.
9: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: देखो बॉस, वीकेंड आ रहा है तो सवाल आपसे ये है कि बाहर के प्लान है या फिर घर में काउच के साथ में दोस्ती करनी है? देखो, अगर आपने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो काउच की दोस्ती के साथ साथ टीवी भी आपके साथ में बेस्ट फ्रेंड बन ही जाता है। वेल, वीकेंड वॉच लिस्ट में काफी वैरायटी आई है।
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है।
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, नया ऐसा है ना, 28 अगस्त यानी 28 अगस्त को Z5 पर आ रहा है बंदर। अनुराग कश्यप डायरेक्शन, बॉबी देओल है इसमें, सानिया मल्होत्रा है, सबा आजाद है एंड स्टोरी काफी अनकंफर्टेबल टेरिटरी में जाती है क्योंकि एक फेडिंग टीवी स्टार पर सीरियस एक्यूजेशन लगता है और फिर कोर्ट से पहले ही मीडिया और पब्लिक ओपिनियन अपना वर्डिक्ट देना शुरू कर देते हैं। वेल, इट्स डार्क, इंटेंस कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग थ्रिलर। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन मोड आकर आपका है। देन प्राइम वीडियो पर बबीता सिंह रिपोर्टिंग। ये है, अगर फैमिली के साथ कुछ देखने का मन है देन नेटफ्लिक्स का चुंबक, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि इसका स्टार कास्ट बड़ा मजे का है। यहाँ नीना गुप्ता है, देवेन भुजानी है, सुमित व्यास है एंड इट्स अ बिग एंसेंबल कास्ट। फाइव नेबरिंग फैमिलीज, खुले दरवाजे, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, जो नेबर से अक्सर आती है ना वो राय जो हमें अक्सर चाहिए नहीं होती है। सो बेसिकली आप वो जमाने में पहुंचोगे जब व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं होती थी सोसाइटी की, बस नेबर्स के दरवाजे खुले हैं और बालकनी से ताक झांक से सब कुछ पता लगता था। So well, movies की बात करें तो अल्फा, आलिया भट्ट और शर्वरी की ये भी स्ट्रीम हो रही है। तो इतने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं मैंने, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो वो मुझे बताइए।

हेलो हेलो, आप वकरा से हो तो वकरा वालों एक्सक्यूजेस अब काम नहीं आएंगे। हाँ जी, वो एक्सक्यूज होते हैं ना अक्सर कि यार हाँ हाँ वॉकिंग करेंगे ना, कल से करेंगे, अरे बस कुछ दिन बाद से करेंगे, ये सब अब काम नहीं आएगी, बस वेदर थोड़ा सा मेहरबान हो जाए स्पेशली। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अलवकरा या वो केयर की साइड में रहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने 3 ब्रांड न्यू पब्लिक पार्क्स ओपन किए हैं। एक है अल मशमूम, दूसरा है अल खुजामा इन अलवकरा और एक है अल अराक इन अलवकेयर। और ये सिर्फ ग्रीन ग्रास, बेंच और फोटो खींचने वाले पार्क्स नहीं है, यू हैव वॉकिंग पाथ्स, डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक्स, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर फिटनेस जोन्स, सीटिंग्स और रेस्ट रूम्स, सब कुछ है। बेसिकली बच्चों का प्ले टाइम, पेरेंट्स की वॉक और आपका मंडे से फिटनेस, सब एक ही एड्रेस पे। वेल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आता है कि इनके नाम भी रैंडम नहीं है। मशमूम, खुजामा और अरक लोकल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड प्लांट्स के नाम हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कतरी आइडेंटिटी बिल्ट इनटू दीज स्पेसेस एज वेल। एंड अगर बिगर पिक्चर देखा जाए ना, दिस इज पार्ट ऑफ कतर्स पुश टूवर्ड्स मोर एक्सेसिबल नेबरहुड ग्रीन स्पेसेस एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी स्ट्रेटजी 2024-2030। सो वकरा बुकेर वालो, सेव द नेम्स, वेदर बेटर होते ही वीकेंड आउटिंग का एक और ऑप्शन ऑफिशियली आपका रेडी हो ही गया है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

देखिए वैसे तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या है ना, रिमाइंडर आल्सो हेल्प्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक फिर से वार्निंग लेकर आई है फॉर द पब्लिक जो ड्राइव कर रही है, ठीक है, जो ड्राइव करने वाले लोग हैं, अगर आप विदाउट लाइसेंस ड्राइव करते हैं देन ऑफ कोर्स इट्स ट्रैफिक वायलेशन एंड इट इज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट और रियली हैवी फाइंस। देखिए मिनिस्ट्री ये कहता है कि ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज अ ट्रैफिक वायलेशन दैट पोजेस अ रिस्क टू द सेफ्टी ऑफ ऑल रोड यूजर्स ऑब्वियसली। तो ठीक है, इस रूल को कंप्लाई करना चाहिए, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में हमेशा चलना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 ऑफ द ट्रैफिक लॉ, जो भी इसे नहीं मानता है या फिर जो भी इस रूल को तोड़ता है शॉल बी सेंटेंस टू आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 month एंड नॉट मोर देन 3 years, और जो फाइन लगेगी बिटवीन 10,000 से 50,000 का 3 रियाल तक फाइन लग सकती है। सो वैसे देखिए अक्सर क्या होता है ना कि कभी कभार हम लाइसेंस जो है वो कैरी करना भूल जाते हैं, कभी लेडीज के केस में ऐसा होता है कि पर्स कभी चेंज कर लिया तो लाइसेंस नहीं कैरी कर पाते हैं, सो स्टफ लाइक दैट। तो आपने जो है ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है जो ड्राइव करते हैं, बिल्कुल सेफ्टी इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, बाकी सब बाद में है ना। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Mix. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi there. What's up? Tell me.
1: मेरी सांस मुझे काम वाली की तरह ट्रीट करती है, पूरा दिन काम बताती रहती है, क्या करूं?
2: Alright, do one thing ना, तुम भी हफ्ते में दो छुट्टियां ले लिया करो यार, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

देखिए बैक टू स्कूल एक्टिवेशंस तो आपको कतर में ऑलमोस्ट हर मॉल में नजर आ रहे हैं और तकरीबन सारे इस वीकेंड तक खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन एक जगह है जहां सबसे इम्पोर्टेंट बैक टू स्कूल एक्टिविटी अब शुरू होनी बाकी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड 30th अगस्त यानी ये संडे से PHCC पब्लिक स्कूल्स और किंडरगार्टन में हेल्दी बॉडीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस कैंपेन शुरू कर रहा है। अब पेरेंट्स इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है, सिर्फ बच्चों को एक लेक्चर देकर हेल्दी खाओ फोन कम चलाओ ये नहीं होता। स्कूल्स में क्लासरूम एक्टिविटीज वर्कशॉप्स और हेल्थ सेशंस होंगे, प्लस स्टूडेंट्स को वीकली ट्रैकिंग कार्ड्स और सेल्फ असेसमेंट टूल्स दिए जाएंगे जहां वो अपनी स्लीप स्क्रीन टाइम वाटर इनटेक न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी जैसे डेली हैबिट्स को मॉनिटर करेंगे। और कैंपेन स्कूल गेट पर खत्म नहीं होता, पेरेंट्स टीचर्स और स्कूल नर्सेस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो हैबिट स्कूल में सिखाई जा रही है वो घर पर कंटिन्यू रहे। सो अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में है, इस कैंपेन को सिर्फ एक स्कूल एक्टिविटी मत समझना, घर पर भी उस ट्रैकिंग और हेल्दी रूटीन को एनकरेज करिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्दी हैबिट्स का बेस्ट सिलेबस वो है जो क्लासरूम से घर तक फॉलो हो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vjetvala burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना हम। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब
3: हमें
2: यार। अरे यार, यार पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने
3: भैया पैसे आप वैसे टेंशन लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: अच्छा एक बात बताओ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है ना? सेविंग मतलब पैसे बचा लिए, इन्वेस्टमेंट मतलब उन पैसों को काम पे लगा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऑप्शंस की तो एक लंबी लिस्ट है। स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट्स है, और फिर हम देसीस का पुराना फेवरेट गोल्ड। अब जहां गोल्ड की बात की है मैंने, तो फिर आज से बता दूं, मिर्ची मॉर्निंग्स में आपको रेगुलरली PMP गोल्ड रेट्स भी बताया करूंगी। तो आज के गोल्ड रेट्स कुछ इस तरह से है। आज 1 ग्राम PMP लेडी फॉर्चुना इज फॉर कतरी रियाल 604, वही 5 ग्राम आपको मिल रहा है 2843 कतरी रियाल में, एंड 10 ग्राम्स आपको मिल रहे हैं 5616 कतरी रियाल में। 1 ounce का रेट है 17,363 कतरी रियाल, और वहीं 10 तोला का रेट है 64,494। सोना खरीदो या ना खरीदो, सोने का भाव जरूर पता रहना चाहिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, BAM's official agent in Qatar. Buy or

0: लोग क्या कहेंगे, ये ख्याल हमें हमेशा सताता है ना। देखो कुछ नया पहनो तो लोग क्या कहेंगे, करियर में रिस्क लो तो लोग क्या कहेंगे, अपनी मर्जी से जिंदगी जियो फिर तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद ना हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पीपल विल हैव ओपिनियंस वेदर यू आस्क देम और नॉट। तो जब कमेंट्री फ्री में मिलनी ही है तो लाइफ ही अपनी टर्म्स पे जियो। और इसी ख्याल पर आज आफरीन की डायरी से एक कविता है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: तो कवि कहते हैं, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना ही है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना।

सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। तो लोग देख रहे हैं, देखने दो, बस जो भी करो ठीक से करो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: बॉलीवुड पोर्टल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: सोनी राजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
4: डिफिकल्ट वन.
5: स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन.
6: सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस, दैट्स व्हाट यू टेल मी. सो क्या बोलूं आपको?
3: सोनी राजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड पोर्टल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

मुझे ना मराठी लैंग्वेज में अलविदा कहने का तरीका ना ज्यादा अच्छा लगता है। जब किसी को मिलकर आप जाते हो तो जनरली कहते हो ना गुड बाय, चलो बाय, मा सलामा एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन मराठी में ना जनरली कहते हैं येते मी, मतलब आती हूँ मैं। मतलब ये तरीका कितना पॉजिटिव है ना, कि हम किसी को मिलते हैं और गुड बाय कहते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि फिर से मिलेंगे ना, जल्द मिलेंगे, और इसी लाइफ की पॉजिटिविटी एक छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस में, छोटी छोटी बातों में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, हम बहुत कैजुअली कहते थे कि हाँ मिलते हैं, चलिए बाय, एंड दैट मिलते हैं समवेयर टर्न्स इनटू मैनिफेस्टेशन एंड ट्रू। और वो इंसान के साथ भी हो सकता है जिसको शायद आप ना मिलने वाले हो, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसको आप महीने सालों बाद मिलने वाले हो, बट दैट वन गुड बाय सेइंग विद अ पॉजिटिविटी कि हाँ यार चलो बाय मिलते हैं, तो बस ऐसे ही कहना चाहूंगी मैं भी कि यार बाय बाय, मा सलामा, मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप ऐसे ही बहुत खुश रहिएगा, और जब आप खुश रहते हो ना तो बस सब सेट है। बस माइक से दिलते आफरीन के साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हाँ जी बच्चों, तैयारियां चल रही हैं बैक टू स्कूल की। वेल, फ्यू आवर्स लेफ्ट और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं कि बैक टू स्कूल सीजन स्टार्ट हो रहा है, बच्चे वापस स्कूल में आएंगे। लेकिन उनका क्या जो बच्चों को गाइड करते हैं, यानी कि स्कूल टीचर्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स की मेंटल वेलबींग का कोई सीन? यस इट इज सुपर स्टेप टेकन बाय लोयला इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर लोयला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेंटल वेलनेस ऑफ द टीम मैटर्स। क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि एक हेल्दी टीम, एक मेंटल स्टेबल टीम ही एक स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर कम्युनिटी बनाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 29th of August 10:30 AM से दोपहर 12 बजे तक स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल में, जो कि अल्बुकेयर कैंपस में है लोयला इंटरनेशनल स्कूल के, इसी हॉल में पहुंचकर टीचर्स इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर फोकस होगा मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस और स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिल्डिंग के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पर, ताकि एजुकेटर्स बिल्कुल रिफ्रेश फील करें और जब ये सेशन में वो जाएं तो एक नई और बेहतरीन शुरुआत कर सके। वेल, आप इसका हिस्सा बन सकते हो। यू कैन ऑल्सो डायल नंबर 4499484858। रिमेंबर, यू कैन डायल नंबर 4499484858। आप लोयला इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर जा सकते हो, जहां पर वो लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप इस सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर ऑफ स्कूल, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। MOPH कम्युनिटी मेंटल हेल्थ चैंपियन इस सेशन को लीड करेंगे, बहुत सारे नाम इसमें शामिल है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिस फेब पदायो कैंडिडो, मिस पूनम शाहिदियो, इसके अलावा मिस एनी वाइनिंग की, साथ साथ रुफारो एंड मिस्टर संजीव कुमार, ये सब के सब लीड कर रहे हैं इस मेंटल वेलनेस ऑफ टीम मैटर्स को। एंड आई एम श्योर ये टीचर्स के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। सो ऑल द टीचर्स, आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और इस मेंटल वेलनेस सेशन का हिस्सा बन सकते हो। 89.6 मिर्ची वन पर अच्छी अच्छी बातें, मस्त मौला गौरव भी बताते मिर्ची था।
1: मिर्ची बैक टू स्कूल पार्टी वाज रियल फन, हियर आर द हैप्पी किड्स।
2: हेलो, मी एंड माय ब्रदर एंजॉयड अ लॉट, इट वाज अ वेरी गुड इवेंट, थैंक यू मिर्ची वन, बाय।
3: हाय, आई एम याहिया, एंजॉय लॉट, थैंक यू मिर्ची वन।
4: हाय मिर्ची वन FM, दिस इज यजदान, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट, इट वाज सो मच फन एंड आई रियली एंजॉयड एवरी मोमेंट, आई लव द गिफ्ट्स एस्पेशली द जंगल जोन वाउचर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट।
1: मिर्ची बैक टू स्कूल पार्टी वाज रियल फन,
5: ड्रिवन बाय सुजुकी कतर। बैक टू स्कूल, बैक टू ऑफिस, गो विद सुजुकी, चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेफ, फ्यूल एफिशिएंट एंड रिलायबल कार्स, टाइम टेस्टेड इन कतर फॉर ओवर 50 इयर्स।
6: विजिट सुजुकी कतर शोरूम बाय तेसी मोटर्स, एयरपोर्ट रोड, दोहा।
7: 89.6 89.6।
8: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
9: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
8: अरे सर, मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ?
9: अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।

सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कदर वालों। हाँ जी, जिस तरीके से आपको पता लग गया है कि दिन बढ़ते बढ़ते ही हम पहुंच गए हैं एंड ऑफ अगस्त, मतलब कि भाई छुट्टियों का खात्मा, बच्चों की छुट्टियां होने वाली है खत्म, और चलने वाले हैं स्कूल्स। 5 बजे की ड्यूटी जो पेरेंट्स की शुरू हो जाती है वो हो जाएगी, उसके अलावा बच्चों की ड्यूटी भाई 2-3 बजे घर आना, खाना खाना और बाकी एक्टिविटीज में ध्यान देना, उसके अलावा आज जाते ही एग्जाम शुरू हो जाना। अरे यार, क्या ही है ना, क्या ही जिंदगी अब बिजी होने वाली है। बस ये लास्ट हफ्ता है जब वो इंजॉय करके अपनी जिंदगी को आरामदेह कर सकते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी हो जाएगी एकदम भगदड़ वाली। इससे पहले कि आप भी भगदड़ महसूस करें मेरे साथ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सुनाने वाली हूँ गानों के साथ साथ वो सारे इवेंट्स जो आपके कतरों में होने वाले हैं। लेकिन यस, आप वीकेंड्स पे ही जा सकते हैं फॉर श्योर, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर अपडेट्स ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था कैसी हो. वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स ऑल डाउन एंड डन इज़न्ट इट. फोर बॉल्स लेफ्ट. दे नीड 12 रन्स टू विन.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: अगर आपको लगता है ना कि लव स्टोरी का मतलब हमेशा परफेक्ट एंडिंग होता है, तो मुसाफिर कैफे आपको थोड़ा रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देगी। और इसी के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं चंदर, सुधा और प्रीति, जिनसे मैं पूछूंगी कि भाई ये बताइए कि अगर आप लोग एक मुसाफिर कैफे में बैठे हैं तो आप क्या वार्तालाप करेंगे। पहले सुनते हैं सुधा से।
1: आई थिंक जर्नीज एंड नॉट पास्ट वाली जर्नीज, फ्यूचर जर्नीज।
0: ये बात तो सही कही भाई, पास्ट की जर्नीज को डिस्कस करना इतना मजेदार नहीं होता जितना फ्यूचर के बारे में। और रही बात जर्नीज की, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं चंदर जी?
2: फूड, पेट्स, लाइफ, मतलब फिलोसॉफिकल भी होती है। शी रीड्स अ लॉट बुक्स विद हर ड्रीम्स।
0: तो बुक्स की बात होती, दैट्स गुड, जर्नी बुक्स। अब प्रीति से भी पूछ लेते हैं कि प्रीति को क्या लगता है।
1: I think we can go from humor to philosophical talks, because I think what I've realized ki hum shayad baat kar sakte hain, you know, I think fir chahe wo life ke bare mein ho, journey ke bare mein ho, ya coffee ke bare mein ho, it's nice when you can just talk.
0: Exactly. It's very nice to have a conversation with a healthy people like us. Isi ke saath chalta rahega silsila jari. Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi One It's Hot.

बच्चों क्या हो आप लोग, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? हाल फिलहाल में बच्चों की एनर्जी देख के तो मुझे सच्ची में गूजबम्स आ गए थे भाई, इतनी एनर्जी, क्या खाते हैं आप लोग? आई नो 2 महीने मम्मी के हाथ का जो हेल्दी खाना आपने खाया है, आई होप वही इतनी एनर्जी लेके आ रहा है। लेकिन बात करूं बलादना बैक टू स्कूल की, तो आप लोगों ने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना हमने आप लोगों को एंजॉय किया। इसके अलावा बात करें, ये जो पूरी एनर्जी आपकी देखने को मिली है ना, ये हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से मिली है। तो हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स दोज आर ड्रिवन बाय सुजुकी तहसीर मोटर्स, स्माइल पार्टनर, नसीम हेल्थ केयर, पिज्जा पार्टनर, पापा जॉन्स एंड एडवेंचर पार्टनर, जंगल जोन, रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का एंड एंटरटेनमेंट पार्टनर Z5। तो इन लोगों की मदद से ही हम आपकी इस एनर्जी को परख पाए हैं, देख पाए हैं। बस अब आप रेडी हो जाइए क्योंकि स्कूल टाइम आ चुका है, ओपन होने वाले हैं स्कूल। अपना बैग पैक कर लीजिए, इसी एनर्जी के साथ स्कूल जाइए, इंजॉय करिए और पढ़ाई करिए। और हाँ, माँ के हाथ का हेल्दी खाना जरूर खा के जाइए क्योंकि बहुत जरूरी है। आपकी पर डे की जो एनर्जी है ना, बस वो उसी हेल्दी खाने से आती है। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: एनर्जी
1: चोरी चोरी टनाना टनाना छुपके छुपके मैं बात कर रही हूँ कि भाई चोरी चोरी छुपके छुपके आपके दिमाग में घुसने आने जा रही है सुहानी शाह द मेंटलिस्ट लाइव इन कतर जल्द ही आ रही है जो आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगी और आपको हाईजैक करके सारे आंसर्स निकाल लेगी। तो भाई अपने आप को थोड़ा सा यू नो क्लियर माइंडेड लेके आना क्योंकि आप देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान को जो मेंटलिस्ट तो है ही है लेकिन उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी मैजिक। यस शी इज द बेस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और आए तो मैं आपको बता दूं 25 सितंबर को आप आ सकते हैं इन्हें देखने QNCC में एंड इसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। जी हाँ आप स्नूनो सिटी या फिर क्यू टिकट्स पे आप अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं। तो भाई ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बिकॉज कतर कैलेंडर प्रेजेंट्स सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईवे एसोसिएट पार्टनर डेयरी क्वीन एंड पापा जॉन्स रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर एंड पार्टनर्ड बाय डाइसू जापान एंड होम्स-आर-अस रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू इवेंट पार्टनर क्यूब and media partner rehab media production partner symphony branding partner brand arts marketing partner q squad and ticketing partner snoonu city। to bhai der kis baat ki hai jaldi se ticket book karwaiye aur enjoy kariye ek amazing si sham aur ek amazing tarike se bas bane rahiye mere sath for more updates stay tuned with us only on 89.6 mirchi 1 & 7।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हू इज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो हु दे आर,
4: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज़ आई विल आल्सो। ये यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live

0: Ochanati kuri, ochanati kuri.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
0: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
1: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
0: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

0: लेकर।
1: कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी ना एक छोटा सा सीड लेके आई थी और बोली कि मुझे ना ये सीड घर पे लगाना है अपने हाथों से। और उसने उसको लगाया भी, उसने उसको लगाया और उसको रोज पानी देती रही। दिन बीते, वीक्स बीते, बहुत सा टाइम हो गया, लेकिन शी वॉज गेटिंग लिटिल यू नो सैड कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, कोई निशानी नहीं दिख रही है कि ये बढ़ भी रहा है या नहीं। एंड आफ्टर फ्यू मोर डेज उसके पेशेंट्स को यू नो टेस्ट करते हुए इस प्लांट ने थोड़ी सी झलक दिखाई, थोड़ा सा जो सीड है उसने हल्का सा अपना ग्रोथ दिखाई, वो हल्का सा ग्रीन रंग का जो प्लांट है ना वो ऊपर ऐसे आ गया। और उस छोटे से लीफ ने मेरी बेटी के फेस पे बहुत ही खुशी और एक जो एनर्जी थी ना उसकी, वो इतनी पॉजिटिव हो गई, इतनी खुश हो गई वो। तो इससे ना मेरी बेटी ने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ग्रोथ अक्सर ना बहुत साइलेंटली होती है, बहुत क्वाइटली होती है। ग्रोथ ऐसे नहीं होती कि फटाक से हो गई और शोर के साथ आई, नहीं, ग्रोथ आती है बहुत साइलेंटली और हम शायद उसको परख भी नहीं पाते हैं। शायद हम अभी भी ग्रो हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो बस मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लेसन मिला कि भाई लाइफ में कीप ऑन गोइंग, कीप बिलीविंग एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि क्या पता कल किसी मोड़ पे आपका ये जो सब्र है यही काम आए। बस इसी के साथ वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि पेशेंटली कोई भी काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करना पेशेंटली ही है अगर आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हो। सो बस मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी
3: इन्होंने चिल्लाई
2: तो फिर
3: बुरा
2: बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्ला के, बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तेरे को मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय करेहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी। ये बहुत खूबसूरत मूवी और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

सो जो एक ऐसी इवनिंग है जहाँ पे मैजिक सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर भी चल रहा है। Yes, you heard that right. Suhani Shah is coming to Qatar live for the very first time on 25th September. So, bhai, save your dates because Suhani Shah is known for her incredible mind reading, magic or psychology based performances. Aur ab aap apne इस एक्सपीरियंस को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा उनको मैजिक करते हुए, माइंड रीड करते हुए बेसिकली। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपकी बारी है उनको लाइव देखने की कतर में। तो अगर आप भी इस मैजिकल इवनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने करना क्या, फ़ोन उठाना है फटाफट से और अपनी टिकट्स बुक करवा देनी है और अपने फ्रेंड्स की भी करवा देनी है स्नूनू ऐप के जरिए। जी हाँ, जहाँ पे टिकट्स ऑनलाइन हो चुकी हैं आप बुक करवा सकते हैं। 25th September को मिलते हैं सुहानी शाह के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस को लेके। स्टेडियम में दास ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: देखिए ये घड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि समय खत्म हो चुका है ईशा, अब तेरे जाने का समय आ चुका है। और इसी बात पे ना थोड़ी सी लाइनें आपको सुना दूं। मुलाकात चाहे छोटी सी हो, मुलाकात चाहे छोटी सी हो, यादें रह जाती हैं, बातें खत्म हो जाएं पर स्माइल्स रह जाती हैं। तो आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीकेंड वीकेंड वाइब्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर, सिंपल है।
2: I'm joking.

0: यार एक बात बताना, क्या आपकी मुलाकात कभी ऐसे किसी शख्स से हुई है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार तुमको पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइफ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अस टू पीपल। जरा देखो ना, कई बार लोग हमारी जिंदगी में बहुत सालों के लिए आते हैं, लेकिन कुछ बस चंद लम्हों के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग जो शायद हमारी जिंदगी में सबसे कम वक्त के लिए आते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो यादें होती हैं ना, वो बेशकीमती हो जाती हैं। शायद इसीलिए हर एक रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बना भी नहीं होता। शायद कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में बस इसीलिए आते हैं कि वो हमें थोड़ा सा बदल सकें, थोड़ा सा हमें कुछ समझा सकें, या जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखा सकें। क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या ऐसा कोई मिला है? इस पे ना मैंने कुछ लिखा है, हर शख्स का किस्सा उम्र भर का नहीं होता, हर साथ का वादा सफर भर का नहीं होता, कुछ लोग मिलते हैं बस दिल को छू जाने के लिए, हर मिलने वाला इंसान ठहर जाने के लिए नहीं होता। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Mirci.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la Burga, burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
3: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा था, तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
3: आज मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
3: वाली बातें कर रहा है,
4: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल जा।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: देखो जब हर किसी के निशाने में एक ही शख्स हो ना, तो लगता है उसे तो मुर्गा बना ही लेना चाहिए।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब इंतजार है, और इनका इंतजार तो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बॉस की बीवी को भी है। अरे सुहानी दीदी की बात कर रही हूँ, सुहानी शाह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन, बहुत अच्छी तरह से जानती है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे कैसे पकड़ा जाए, एक एक दिमाग के खाने जो है वो कैसे खोले जाए, उसके बाद उसे चुप कैसे किया जाए। तो मैं तो सोच रही हूँ कि सबसे पहले उनकी मुलाकात मैं अच्छी तरह से कराऊं, किसी की तो मेरे बॉस की कराऊं, उनकी बीवी का अरमान भी पूरा होगा और हम सब का भी होगा कि आखिरकार मेरे बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है। Having said that, न जाने ऐसे कितने इवेंट्स के बारे में हम अखबारों में पढ़ा करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स में देखा करते हैं, एंड ऐसा सोचा करते हैं कि भाई ऐसा किया तो उसने किया कैसे, काश मैं इसका शो जो है वो लाइव अटेंड कर पाऊं। तो जब ऐसा मौका आपको कतर में मिल रहा है, सो व्हाई वुड यू वांट टू मिस इट। वेल 25th ऑफ सितंबर कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, कतर में पहली बार सुहानी शाह परफॉर्म करने आने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। फटाफट से जाओ प्लैटिनम लिस्ट क्यू टिकट्स या स्नूनू सिटी पर, एंड अपनी टिकट्स जो है ना सिक्योर करो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हाथ से निकल जाएं, उसके बाद मत कहना अंशु कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या। गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: देखो मुझे तो इन दिनों ये लगने लगा है कि कहीं किताबों से ज्यादा उस टिफिन के डब्बे का वजन तो ना होता।
1: मिर्ची अंशु
0: वाल, अगर इस वक्त अपने देश यानी कि कतर की हम बात करें और यहाँ पे चलाई गई मुहिम को देखने की कोशिश करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने हमारे बीच पेश की है वो बस यही कि हर मायने में बच्चों की वेलबींग को सबसे ऊपर रखा जाए, चाहे उनके फिजिकल वेलबींग की बात करें, मेंटल या इमोशनल। चलिए अगर मैं सिर्फ स्कूल बैग की ही बात करूं तो उसके लिए खास स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो पेश किए गए कि भैया जितना आपके बच्चे का वजन है ना उसके स्कूल बैग का वजन 10-15% ही हो, उससे ज्यादा ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इतना समझ जाएं कि आप अपने बच्चे की बॉडी में एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं इन केस द बैग इज अ हैंगिंग बैग एंड कहीं ना कहीं स्पाइनल प्रॉब्लम्स की तरफ आप उन्हें लेकर जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी यही बात कही एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने इसे रीएम्फसाइज किया है। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगी, आज की डेट में आपके बच्चे के बैग में जितनी किताबें होती हैं ना, कहीं उससे बड़ा उसका टिफिन का डब्बा ना होता। क्योंकि जितनी कहानियां मैं इन दिनों टिफिन की सुनती हूं, कभी कभी लगता है कि कहीं मैं डाका डालूं तो एक बच्चे के टिफिन पे, नहीं अपने जमाने में किया है, आज भी मिल जाए तो जरा अच्छा होगा। भाई साहब बच्चे जो है टिफिन में 56 भोग लेके जाते हैं। वेल आज की डेट में ट्रॉली बैग्स की भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर ऐसा कुछ लगे तो वहां पर शिफ्ट हो जाए और टिफिन में जो बच्चे के लिए बना रहे हैं वो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बस ले ही आए। बच्चों का ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें, साथ टिक के बने रहें, सुनते रहें कदर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: अब ये हुई ना बात।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो मेरी ना एक दरख्वास्त है, एंड खास तौर पे दरख्वास्त है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन, आपने आज की डेट में जितने भी अभियान चलाए हैं, काश आप टाइम मशीन को अपनी जिंदगी में शामिल करें, मेरे स्कूल डेज में भी वापस आएं और वो सारी खूबसूरत चीजों को मेरी लाइफ में लेकर आएं। भाई साहब, इस वक्त अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन की एक खास मुहिम की बात करूं तो वो है आने वाले एकेडमिक सीजन को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, एजुकेशन की क्वालिटी को और बेटर किया जाएगा, पूरे के पूरे पैटर्न को चेंज किया जाएगा एंड कुछ इस तरह की मेथोडोलॉजीज को शामिल किया जाएगा जिससे बच्चों की मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा सके। यानी कि पढ़ाई होगी लेकिन पढ़ाई बिना किसी स्ट्रेस एंड प्रेशर के होगी एंड इस बात की मॉनिटरिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली की जाएगी। साथ ही इस टेक्नोलॉजिकल एडवांस में ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन को स्टडीज में अभी से इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं आने वाले वक्त में आने वाले चेंजेस के लिए पूरी तरह से अभी से तैयार रहे। लेकिन अगेन ये सारी चीजें होंगी मेंटल वेलबींग को खासकर ध्यान में रखते हुए। काश हमारे समय में भी ऐसा होता तो भैया घर पे डांट सुनने के बाद पढ़ाई को लेकर जो स्कूल में भी दिन रात पड़ी पड़ती थी ना, वो हमारे साथ ऐसा कुछ ना होता, वो बात अलग है, इतने नालायक थे। दुनिया जमाना क्यों ना चिल्ला ले, नंबर तो ने लाने हैं, हम उतने ही लाएंगे, कम होंगे लेकिन ज्यादा ना आएंगे। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

यार बदलते वक्त के साथ इन तीन ट्रेडिशंस को बदलते हुए तो मैंने भी देखा है। मिर्ची अंशु यार बचपन के दिनों में ना मुझे वॉचेस का बहुत शौक था, तो बस वो छोटी सी अंशु अपनी मम्मी की काली बेल्ट वाली वॉच पहन हर दिन स्कूल जाया करती थी। लेकिन पापा को लगा यार कोई तो फैंसी वॉच उसके पास होनी चाहिए। फिर क्या था, पहले मिनी माउस वाली वॉच, फिर वो बटरफ्लाई वाली वॉच पूरे स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। वक्त बदला, हम पहुंचे कॉलेज एंड लगा भैया अब तो ब्रांडेड वॉचेस का जमाना है। फिर क्या था, जिंदगी में शामिल हुई पहली ब्रांडेड वॉच टाइटन की, अरे बस वही जिसे कटरीना कैफ ने भी पहना था। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे जब हम काम करने लगे तो लगा भैया दो चीजें बदलने की बारी आ गई, अपने कपड़े एंड कपड़ों के साथ मैचिंग वॉचेस। तो अब वो घड़ी के डब्बे में एक नहीं कम से कम 10 घड़ियां हुआ करती थी। खर्चे भी बढ़े और हाँ वक्त को हैंडल करने का तरीका भी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर जमाना आया जब ये खर्चे थोड़े कंट्रोल हुए, जब एक घड़ी ने सारी ट्रेडिशनल वॉचेस को टेक ओवर कर लिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉचेस। याद है क्या गजब क्रेज जो आज तक कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है। लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं ना सर्कल जो है कहीं ना कहीं पलटता भी है और पूरा भी होता है। तो एक बार फिर से कुछ तो बदला है, लेकिन क्या बताती हूँ आपसे कुछ देर में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Hello?
3: ¿Hello?
2: ¿Con?
3: ¿Hello, Pippin?
2: ¿Con, Bulda?
3: Está. Mi pasaporte ha visto, Bulda. ¿Apne pasaporte ha play kiya tha?
2: ¿Ah, pasaporte ha play kiya tha?
3: Ahí está, bolo. ¿Cómo ha play kiya tha, apne?
2: भाई तू इतनी धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है, मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें, इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आपको बताए थे
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट लिए तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे कौन? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
2: नहीं बोलना।
3: भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है आपसे।
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके।
3: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ready? To learn?
7: Yes.
6: To play?
7: Absolutely.
6: To grow?
7: With Maserati.
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labne.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar. Driven by Shackman Trucks. Zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman heavy duty trucks and boom trucks. Power that saves. Distributed by Carmel Group. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
8: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: देखो, समय के चक्र की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि ये पलटता भी है और पूरा भी होता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: तो समय के चक्र ने घड़ी के कांटे को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी जिंदगी में भी शामिल कर ही लिया। जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरह ट्रेडिशनल वॉचेस की जर्नी एक पॉइंट पर आकर थोड़ी रुकी और किसी ने इसे पूरी तरह से टेक ओवर किया, एंड वो थी स्मार्ट वॉचेस। और आप हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मार्ट वॉच जैसे ही दुनिया में आए किस तरह लोगों की जिंदगी में एक अलग सा नयापन आया, एंड वो सारी की सारी ट्रेडिशनल वॉचेस जो हैं किसी पिटारे डब्बे के अंदर कहीं खोसी गई। लेकिन अगर आज के जमाने और दौर को देखने की कोशिश करें तो एक बार फिर से अब लोगों के दिल में अगर कोई ख्याल है तो भैया बस यही कि मैचिंग कपड़ों के साथ वो मैचिंग वॉचेस तो होनी ही चाहिए, वो डिजाइनर लग्जूरियस। तो अगर आपको लगता है कि आपके ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं, एंड अंशु की जिंदगी की तरह वक्त ने आपकी जिंदगी में भी उलटफेर किया है, तो इतना समझ जाइए दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन हमारी जिंदगी में लौट कर आ रहा है 28th of September से लेकर 3rd of October तक, अभी तक के अपने सबसे बड़े एडिशन के साथ, जहां पर तकरीबन 175 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। तो मैं तो कहती हूँ आप और हम दोनों ही शॉपिंग की तैयारी करते हैं। आप असल शॉपिंग करना, मैं आपके साथ विंडो शॉपिंग करूंगी, क्योंकि क्या है ना, आप जो खरीदेंगे कहीं ना कहीं पहनने वाला कोई तो हो। शेयरिंग इज केयरिंग। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। अजी मेरे लिए तो आज वीकेंड है, मुझे तरीके से सॉलिड से सोना है, लेकिन आप जो हैं अपने सोने की पेटी में जरा सा इंक्रीमेंट कर लें, क्योंकि आज के रेट्स जो हैं गोल्ड की तरह बिल्कुल आपकी जिंदगी में स्पार्कल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो चलिए आज का गोल्ड अपडेट आप तक पहुँचा दिया जाए। The stunning PAMP 1 gram gold lady Fortuna bar is priced at 604 Qatari riyals. The beautiful PAMP 5 gram gold lady Fortuna bar stands at 2843 Qatari riyals. And moving up, the classic PAMP 10 gram gold lady Fortuna bar is priced at 5616 Qatari riyals. And then comes the premium PAMP 1 ounce gold lady Fortuna bar shining at 17363 Qatari riyals. And finally, if you are thinking big, bhai saab, peti jo hai bhari hui hai. So the impressive PAMP 10 tola gold bar stands at 64,494 Qatari riyals. So jaiye, aap jo hai sone khareedne ki tayari kariye. Meanwhile, main jo hai ek neend lekar sone ki tayari karu. Enjoy, Bandi ka naam Anshu.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy

0: की जिंदगी में तो अच्छा खासा कोहराम मचाती हैं, ये कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हैं क्या?
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, ये बात तो तय है कि तुम जिससे भी शादी करने वाली हो वो हमेशा सुखी ही रहने वाला है। भाई साहब, तुम उसके दिमाग को सही सही तरह से पढ़ लो एंड ये बात समझ जाओ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जरा सोचो, उस आदमी की जिंदगी मुकम्मल ना हो तो फिर क्या ही हो। सबसे बड़ी समस्या हस्बैंड्स की जिंदगी में अगर कुछ है तो वो बस यही कि काश मेरी वाइफ सही तौर पे समझ पाती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ना अपनी कहानी जो है वो ना बना पाती। वेल, सुहानी शाह, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करें, मैजिशियन की बात करें, तो इस हुनर के साथ बहुत अच्छी तरह से जानी और मानी जाती हैं कि किसी के दिमाग को सही सही तरह से कैसे पढ़ा जाए। 25 सितंबर को ये आ रही है कतर अपने मैजिकल पावर के साथ हम सबको मंत्रमुग्ध कर देने के लिए। भैया, हम तो सुहानी दीदी से यही पूछेंगे, औरों की जिंदगी की कहानी तो आप बना पाती हैं और बता भी पाती हैं, लेकिन जो आपसे शादी करेगा उसका अच्छा होगा या क्या ही होगा, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? वेल, ये बात भी हम उनसे पूछ ही लेंगे। आपने अपनी टिकट्स बुक की या ना की? स्नूनू सिटी प्लैटिनम लिस्ट क्यू टिकट्स, भाई सब हम हर जगह अवेलेबल है। जाएं जल्दी जल्दी, अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो अवेल करें एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल फॉर वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। सुहानी शाह लाइव इन दोहा, 25 सितंबर, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो हु दे आर,
4: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, ब्लेस्ड।
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो, ये यू आर लिस्निंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist, Suhani Shah.

0: बेटा अलार्म को स्नूज में बहुत डाल लिया, अब जरा एक बार में उठने की आदत जो है ना डाल ही लो।
1: मिर्ची अंशु
0: हाय, रात भर की नींद एक तरफ, अलार्म को स्नूज में डालने के बाद वो 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद एक तरफ, और ये बात जो है ना तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी से कोसों दूर जाती हुई नजर आ रही है। जब सुबह सुबह ये पता हो कि रास्ते में भीड़ ज्यादा होगी, बच्चे जो है पूरे रोड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, स्कूल की बसेस नजर आएंगी एंड साथ ही गाड़ियां भी बढ़ जाएंगी, तो घर से निकलना होगा जल्दी, तो जो 15 मिनट तुम्हारा अलार्म का स्नूज बटन बंद होगा, हाय उसकी पीड़ा तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हकीकत है जी, अगर लग रहा है ना कि अब पहले की तरह सड़कें खाली खाली मिलेंगी, तो भैया ये मौका जो है अब हाथ से जरा सा जाने वाला है, तो या तो फिर अलार्म का टाइम चेंज करें, फिर 15 मिनट का एक्स्ट्रा नींद जो है स्नूज के जरिए ले ही लें, नहीं तो एक बार में उठने की आदत जो बच्चों को सिखाते हो वो अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लो जी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
1: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फैमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है, अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धू रन धर।
4: नंबर 20।

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है, मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू। लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वार्मथ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान,
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान तुम्हें

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान, म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ, एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी। और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं। और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
2: नंबर 17।
3: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई।
4: लिख रहे हो ना?
3: तुम भी गाओ।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
1: नहीं नहीं सर ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
1: अरे यार
2: हो गया, आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
1: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
2: अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
1: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़
1: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: कहर का अपना मैडनेस है, धमाल 4 का अपना यूनिवर्स है, और बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ फ्रेंचाइज लिख दो तो जनता टिकट खरीद ही लेती है। अजय देवगन के पास सिंघम, गोलमाल, दृश्यम है। अक्षय के पास हाउसफुल, हेरा फेरी है। लेकिन इमरान हाशमी, यार वो बंदा तो खुद में एक जॉनर है। आवारापन, राज, मर्डर एंड देन यू गॉट जन्नत। जन्नत का मैजिक थोड़ा अजीब है ना, सुपर हीरो ना, स्पेक्टिकल ना, फैमिली सागा, बस एक इम्परफेक्ट आदमी, एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और ऐसे गाने जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जिंदगी में चलते रहे। अब आवारापन की कामयाबी के बाद जन्नत 3 की बातें हो रही हैं, लेकिन जन्नत 3 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया गाना एक पूरी जनरेशन को वही फीलिंग दे सकता है। क्योंकि जन्नत की कहानी याद रह गई, लेकिन जरा सा ने उस कहानी को जिंदा रखा। विशेष फिल्म्स हैव टेकन द रिस्क ऑफ मेकिंग जन्नत 3। आई वांट टू से गुड लक, क्योंकि एक नया जरा सा बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस आदमी के एक और गाने पर हम लौट रहे हैं, क्योंकि हम तो इस गाने पे फिदा हैं, नंबर 14 पे। तो फिर आओ फ्रॉम आवारापन 2,
1: नंबर 14।
2: तो फिर

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये भीड़ बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया।

0: gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है, इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी. कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है. लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2.
1: नंबर 12.

0: Rosa, only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
4: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
5: वेट
4: टेल
5: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्ममेकर एंड एक्टर हिमसेल्फ
3: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है
9: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: शरारत को सुनते ही एक बात याद आती है कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह गायब हो गए। वही रणवीर जो कभी कैमरा से बचकर नहीं चलता था, इंटरव्यूज, इवेंट्स, साउंड बाइट्स, हर जगह रणवीर होता था। और फिर अपने 16 साल के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद सबसे खामोश रणवीर सिंह। लेकिन 8 महीने बाद रणवीर फाइनली बोल रहा है।
1: Brother was not an easy film to mount. It was not an easy film to execute. There were several challenges. डंके की चोट पे जाके बैक करना कन्विक्शन के साथ कि अगर ये सही पड़ गया then we will be breaking new ground.
2: I have to say I was given all the love, all the support and all the encouragement even at a time when my movies were not doing well.
1: Career है, ups and downs होते रहते, but to have received that kind of support meant a lot to me. It's nothing short of a blessing.
0: शायद धुरंधर सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये उस वक्त आई जब रणवीर को एक बार फिर याद दिलाना था कि वो क्या कर सकता है। वही लड़का जो बैंड बाजा बारात से आया था, लुटेरा में टूट गया था, बाजीराव बना, गली बॉय में फिर जन्म लिया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक तरह देखा जाए तो वो होती है रामलीला के साथ, क्योंकि उसमें कुछ बदल गया। संजय लीला भंसाली ने उस रणवीर को परखा जो सिर्फ स्टार नहीं एक्टर बनने की भूख रखता था, और आज मेरा पिक ऑफ द वीक उसी रणवीर का एक और रंग है। अरिजीत की आवाज में वो इश्क तो शोर नहीं करता, लाल इश्क। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: मेरी सास मुझे काम वाली की तरह ट्रीट करती है, पूरा दिन काम बताती रहती है, क्या करूं?
2: ऑलराइट, डू वन थिंग ना, तुम भी हफ्ते में दो छुट्टियां ले लिया करो यार, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: इमरान हाशमी की एक खूबसूरत बात है, उन्होंने कभी अपनी इमेज को अपनी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनने दिया। और शायद इसलिए सिनेमा में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब कोई एक्टर अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। शाहरुख खान ने डर में हीरो की जगह ऑब्सेशन को चुना, अजय देवगन ने खाकी में अपनी इमेज का एक अंधेरा दिखाया, और सैफ अली खान ने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बनकर पूरी तरह इस सो कॉल्ड इमेज की धज्जियां उड़ा दी। नंबर 9 पर है साड़ी, धमाल 4 से, एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां हम जानते हैं कि दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन हैवान नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें अक्षय कुमार को एक सीरियल किलर के स्किन में देखना, सैफ अली खान को एक ऐसे ब्लाइंड मैन के रूप में देखना जैसे सेंसेस ही उनकी ताकत हैं, और प्रियदर्शन साहब को हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला की कॉमेडी से निकलकर एक डार्क नुआर फिल्म की दुनिया में जाते देखना, ये सिर्फ जॉनर चेंजिंग नहीं है, ये इमेज के खिलाफ जाना है। और जब बड़े स्टार्स अपनी ही पहचान को चैलेंज करते हैं ना, तब फिल्म देखने की वजह सिर्फ कहानी नहीं होती, क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये आदमी अपने आप को कितना बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 पर इंतजार कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया।
1: नंबर 8।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: विवेक जी
1: हाँ जी बताइए
2: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
1: ऑफ कोर्स
2: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मज़े अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासेज क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो
2: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
1: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
2: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो मैं ध्यान रखता
2: हूँ थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन
1: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
2: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात क्या हो गई थी
1: अरे कुछ नहीं यार
2: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
2: अच्छा अच्छा
1: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
2: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
1: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
2: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
1: मजे आ रहे हैं
2: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
1: अरे
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
6: शी कैन रीड योर माइंड She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

तबाही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

ऊंचा लंबा कद, यार टाइटल ही काफी है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी आए जिनकी पहली फिल्म से ही उनका कद जो है वो काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन उसके बाद हर फिल्म उसी के नीचे खड़ी नजर आई। आदित्य धर, फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर, उन्होंने इससे पहले बनाई थी उरी, एक फिल्म जिसको देख के लगा कि यार ये आदमी कहां जाएगा, लेकिन फिर आया 6 साल का इंतजार, और जब धुरंधर फाइनली आई तब समझ आ गया शराब गए नहीं थे, he was cooking। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभिनव कश्यप, दबंग में उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, एक पूरा फ्लेवर क्रिएट किया था।

लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाई बेशरम। फिल्म नहीं चली एंड उसके बाद कैमरा के पीछे अभिनव भी गायब हो गए। देन देयर इज तरुण मनसुखानी, दोस्ताना नाम की फिल्म जो 2008 में आई थी, एक अर्बन नया बॉलीवुड मिला। फिर ही मेड अ फिल्म कॉल्ड ड्राइव और वो मैजिक दोबारा नहीं बना। तो सवाल ये नहीं है कि पहली फिल्म फ्लूक थी कि नहीं, सवाल ये है कि पहली फिल्म के बाद फिल्म मेकर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करता है। कोई भी डायरेक्टर वन हिट वंडर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसके बाद हर फिल्म का हिसाब उसी से होता है। लेकिन दोस्ताना की वो दुनिया यार एक गाने में अब भी बिल्कुल फ्रेश लगती है। जाने क्यों, क्या गाया है विशाल ददलानी ने। इट इज अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन और ये बन रहा है मेरे इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सोनी राजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
4: डिफिकल्ट वन,
5: स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन। सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस, दैट्स व्हाट दे टेल मी। सो क्या बोलूं आपको?
3: सोनी राजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया। अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time,
6: the mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
10: नंबर 3।
11: लेट्स गो।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम्ड टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

वो मिले यावन बदलेंगे ना हम, टीचर चाहे बदलती रहे। भैया अपने स्कूल में तो यही थी कहानी, टीचर जीरो दे या वन, हमारा सिर्फ शैतानी में ही लगता था मन। वेल, इन सब के बीच आज के बच्चों के लिए मैं अलग अलग बातें देखता हूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे देखिए, बैग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू की है और कह रहे हैं पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के लिए जब बैग लेने जाओ तो बच्चों के लिए ऐसा बैग लो जो उनके कंफर्ट को, उनके बॉडी पोस्चर को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। एक हमारा दौर था, पहले तो वो एल्युमिनियम वाली पेटी, वो मेटल बॉक्स लेके जाते थे, फिर कैनवस बैग्स आ गए और आजकल के बच्चों के लिए ड्रैग करने वाले बैग, मतलब बस स्कूल बस में चढ़ाओ, उतारते ही उसको सूटकेस की तरह ड्रैग करके ले जाओ। लेकिन यार वो दौर भी अलग था, ये दौर भी अलग है। यहां पर बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सारे पेरेंट्स से कहा है अनसुटेबल बैकपैक्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये उन्हें बैक पेन देता है, उनके पोस्चर में प्रॉब्लम लाता है और शोल्डर स्ट्रेन अलग से करते हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। एक तो 10-15% वाला रूल, यानी कि आपके बच्चे का वेट अगर 35-40 केजीज के बीच में है तो उसका जो जनरली बैग होना चाहिए वो अराउंड 3-4 केजीज होना चाहिए भरने के बाद, और मैक्सिमम अप टिल 5 केजीज, ये आपको देखना है। डबल पैडेड वाइट शोल्डर स्ट्रैप लीजिए ताकि बैक को सपोर्ट मिले और बैलेंस वेट जो है स्पाइन को प्रोटेक्ट करता रहे। इन सब के बीच एक मल्टी कंपार्टमेंट बैग वाली प्रोटिप दी गई है जिसमें बुक्स जो है स्पाइन के पास रख सकते हैं और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कंपार्टमेंट अलग बैग में चीजें रख सकते हैं। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, यह दौर अलग है, लोग बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इसीलिए गाइडलाइंस इशू की है। थैंक यू MOPH। अगर आप हमारे दौर में होते तो शायद हमें भी 2-4 बैग और ज्यादा मिल जाते, वरना अपना वाला बैग क्लास 1 से लो तो क्लास 5 तक चल ही जाता था। 89.6 मिर्ची 1, इट्स ऑल।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा
2: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, कहाँ से? मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
8: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
6: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health. Because aap deserve karte hain best care.
6: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
10: Visual media partner Rehab Media.
6: Production partner Symphony.

0: वैसे इस दुनिया में बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है। मुझे याद है, मैं स्कूल के बाहर खड़ा हो गया था और अपने पापा से लड़ रहा था कि मैं स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ घर वापस जाना है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ स्कूल।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: और शायद ऐसे बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए अब इन नए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने वाले हैं। यह हम आपको बता दें, कतर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन से एक बड़ी खबर आई है। मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी लोलवा बिंत राशिद बिन मोहम्मद अल खातर साहब ने बताया है कि 2026-27 ईयर के लिए 6 ब्रांड न्यू स्कूल बिल्कुल तैयार हैं। Yes, बॉयज के लिए जहां अल शखामा और एन खालिद में बने हैं, वहीं गर्ल्स के लिए रफदत अल हमामा, दोहा और मुआइदर में स्कूल्स बने हैं एंड अल धकीरा प्राइमरी स्कूल भी बना है। और इसके अलावा 34 प्रिंसिपल जो हैं उनके शफल होंगे और नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, 17 न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड 17 प्रिंसिपल्स जिनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है। एंड स्कूल्स विल बी एकदम अपग्रेडेड हाई टेक्नोलॉजी वाला कतर नेशनल विजन 2030 का फुल ऑन पावर मूव, जहां पर हाईटेक लैब्स, टॉप टियर एनवायरमेंट एंड बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जमाना हमारा था जब ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखने का एक अलग ही मजा था। एंड मैं बताऊं, मुझे क्लास में एक ड्यूटी जरूर मिलती थी, हैंडराइटिंग ठीक ठाक थी, इस वजह से कि डेट एंड कौन सा सब्जेक्ट है ये गौरव को बार बार लिखना है। कुल मिलाकर यार स्कूल डेज जैसी फीलिंग कुछ और हो ही नहीं सकती। हालांकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कितना भारी बोझ है, लेकिन आज जिंदगी में जो दूसरे काम मिले ना उसके बोझ तले हमें स्कूल की लाइफ सबसे अच्छी और यादगार लगती है। इस उम्मीद में कि आप अपने नए सेशन में नए स्कूल में जा रहे हैं, आप सबको ऑल दी बेस्ट एंड कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग एंड जितनी मस्ती करनी है करो, जितनी पनिशमेंट खानी है करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहो। 89.6 मिर्ची वन, हैप्पी बैक टू स्कूल किड्स, इट्स हॉट।

0: बैक टू स्कूल में ऑफर ही ऑफर चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ भाई, शॉपिंग मॉल से लेकर बड़े बड़े हाइपरमार्केट्स तक बैक टू स्कूल। इनफैक्ट मोहल्ले वाले बकाले वाले भैया लोग भी आने वाले टाइम में देखना बैक टू स्कूल ऑफर लगा देंगे। लेकिन इन सब के बीच हमारे बच्चों के स्कूल की ये जर्नी बिल्कुल सेफ हो और स्कूल के आसपास उन्हें किसी तरह का डर ना हो, इसको भी मेक श्योर किया है हमारे कतर के अशगल ने।
1: #974974 the most trending local news of the day।
0: कतर के 674 स्कूल्स के सराउंडिंग जोन में ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स का जो वर्क चला था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। Yes, और अब आपको बता दूं यहां पर आपको मिलेगी नई रोड मार्किंग्स और बहुत ज्यादा साइडवॉक्स को थोड़ा वाइडन किया गया है, स्पीड हम्स बढ़ाए गए हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगाए गए हैं और मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर की गई है। और इसके साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी रैम्प्स भी बनाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कूल अपने एकदम सेफली पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो। और ये सारी बात खुद बताई इंजीनियर अब्दुल्ला अलमारागी साहब ने, रोड सेफ्टी इंजीनियर है अशगाल रोड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। और उन्होंने कहा स्कूल जोन ट्रैफिक सेफ्टी प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था और हर साल इस पे लगातार काम होता है ताकि स्टूडेंट का जो स्कूल अराइवल टाइम है, डिसमिसल टाइम है, उस दौरान उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में दोस्तों हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि जब हम किसी स्कूल जोन में हैं तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलाएं, स्पेशली अगर वो टाइम है बच्चों के स्कूल छूटने का या बच्चों के स्कूल आने का, तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। एंड मैं इतना भी कहूंगा कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ट्रैफिक साइनेज के बारे में जरूर बताया करें, इससे बच्चों में और अवेयरनेस आती है। इस उम्मीद से कि आपका बच्चा सेफली स्कूल आएगा, लौटेगा एंड इस बार एकेडमिक ईयर में कमाल करेगा, मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर बैक टू स्कूल। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर। सिंपल है।
2: I'm joking.

क्या आपके ना चाहते हुए भी कोई आपको मैसेज भेज रहा है? हाँ। क्या आपको अनवांटेड कॉल्स आ रही हैं? हाँ। क्या आपको स्पैम ईमेल्स आ रहे हैं? हाँ भाई हाँ, तो अब नहीं आएगा। क्योंकि हमारे कतर की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हम सबको रिमाइंड कराया है कि हमारे पास किसी भी वक्त कतर की हर प्रमोशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से अपना कंसेंट विड्रॉ करने का पूरा राइट है। कंपनीज को अगर अपना प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो उन्हें हमारा एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना जरूरी है, और अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं और बार बार आपको रिपीटेड प्रमोशनल एसएमएस, ईमेल्स या अनवांटेड कॉल्स इरिटेट कर रहे हैं तो आपके पास मौका है। पहले तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको स्पैम मैसेजेस ये सब आ रहा है ब्लॉक करने के बाद भी, तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप NCSA के पर्सनल डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बस उनके पोर्टल पर जाना है, ऑनलाइन एक कंप्लेन कर देनी है, फॉर्म फिल कर देना है, और सबमिट करते ही देखिए कैसे फटाफट एक्शन लिया जाएगा। तो अब आने वाले टाइम में ना आपको रिपीटेड प्रमोशनल एसएमएस मिलेंगे अगर आप अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मिलते रहेंगे। इसमें कभी कभी फायदा भी हो जाता है, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसमें कई सारे स्कैमर्स आपको अपना मैसेज भेज के आपके पैसे रफू चक्कर कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए, एंड कोशिश यही कीजिए जैसे ही कोई आपको कहे सर हमारे पास एक जबरदस्त प्रमोशन ऑफर है, बस आप अपने फोन पर आए ओटीपी हमसे शेयर कीजिए, तो आप उसको कहिए ना गोरिये, गौरव ने बता दिया गोरिये कि तुम स्कैमर हो। 89.6 मिर्ची वन पर आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस आपको बहुत सारे नुकसान से बचाती है, एंड थैंक यू NCSA हमारे राइट को याद दिलाने के लिए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब है।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई क्या निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख में जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस का कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 ना, 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: बताइए,
3: आप मुझे आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: रेडी
7: टू लर्न?
6: यस।
7: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
7: टू ग्रो?
6: विद मेजराती।
8: दिस स्कूल सीजन फ्योर एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स,
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवने, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
11: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored

बहुत दिनों के बाद जब स्कूल जाओगे तो पहले दिन की पढ़ाई का गहरा असर तो होगा, लेकिन अब जब स्कूल में कुछ बच्चों को नए सब्जेक्ट मिलेंगे तो उनके करियर पर इसका गहरा असर होने वाला है। यस, मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि कतर में न्यू सेशन शुरू होने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहां पर इस बार कुछ खास हो रहा है। कुछ खास यूं हो रहा है कि उनके लिए कुछ नए कोर्सेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने सेशन 2026-27 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। काश हमारे स्कूल डेज में भी ये हो पाता, क्योंकि मैं ना बहुत घबराता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग है जी, यहां पर एक सब्जेक्ट बनाकर साइंस के सारे प्रेशर को कम कर दिया गया है। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम के लिए गर्ल्स के लिए बकायदा हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड कुकिंग, और बॉयज के लिए कैंपिंग सी ट्रिप्स एंड सर्वाइवल स्किल्स का भी एक लाइफ स्किल प्रोग्राम सब्जेक्ट आ गया। फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए पैसा कैसे मैनेज करना है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, कैसे डायरेक्ट रियल लाइफ में हम इन सारी पॉलिसीज को लगाएं, इसके लिए भी बकायदा एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। टेक फ्यूचर स्किल्स, जहां पर AI, डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स सीधा सिस्को अकेडमी से इंजाज कतर के थ्रू कतर डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप कर इन सारे कोर्सेस को लॉन्च किया गया। मतलब हमारे टाइम पे जहां रट्टा मार दिन में हिस्ट्री सिविक्स बड़ी बेवफा रात को सफा हो जाती थी दिमाग से, यहां पर सब कुछ बड़ा ही प्रैक्टिकल हो रहा है। और AI के जरिए अब जब सीखना होगा दोस्त, तो ये जनरेशन वाकई में कुछ बड़ा करेगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन, जो कोर्सेज लाकर बच्चों की जिंदगी में बहुत सारा सुकून भी ला रही हैं। वरना हम तो दिन में रट रट के रात में सफा हो जाते थे, और एग्जाम में सफा चट 89.6 मिर्ची वन पर मम्मी से मिलते थे पटापट गालों में थप्पड़। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Stay ahead of today's gold rates with Alpardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
1: and earn Qatar Airways Avios today.
0: Visit our branches or download the app now.
2: 89.6 पर जीवन पर मैं हूँ आरजे मस्मोलो गौरव एंड अगर पैसे हैं एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही आपको सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है तो राइट नाउ गोल्ड रेट्स मिलेंगे आपको कुछ यूं PAM 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 604 कतारी रियाल फॉर 1 ग्राम वहीं PAM 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 2843 कतारी रियाल PAM 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 5616 कतारी रियाल PAM 1 औंस

यार मैंने क्लास में अक्सर लोगों से पेन मांगता था। यूं कह ले मैं आदत से मजबूर था, मैं पूरा स्कूल बैग तो लेकर जाता था, उसमें खाने के दो टिफिन रहते थे, लेकिन कई बार पेंसिल बॉक्स घर पे छूट जाता था। एंड यही आदत थी स्कूल टाइम में, फिर दोस्तों से कहता था भाई एक मिनट पेन दे देगा, कल तुझे दे देता हूँ। एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी होता ज़रूर होगा। स्कूल डेज की बात ही अलग होती है यार, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि स्कूल का जो हमारा दौर था वो फिर से कैसे वापस आ सकता है। हम लोग के टाइम में मुझे याद है जेटर पेन आती थी, जिसके लिए बहुत ही खूबसूरत शायरी कही थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे जावेद अख्तर साहब ने। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले, क्योंकि जेटर हमेशा चलता है। खैर कुल मिलाकर पेन की बात से मुझे यही याद आया कि स्कूल में जितनी पढ़ाई कॉपी में होती उससे ज़्यादा मेरे हाथों में कलम के निशान होते थे, और मम्मी रोज़ पूछती थी अरे इतना क्या करते हो कि हाथ में इतने सारे पेन के दाग। यार काश वो दाग एक बार फिर से लग पाएं, मैं स्कूल की क्लास में फिर से बैठ पाऊं, टीचर पढ़ा रहे हो और मैं पीछे से आवाज़ निकल, ये सब छूट जाएगा। लेकिन आप अपने उस बचपन को ज़रूर जीना बच्चों, क्योंकि ना एक बार ये दौर निकल जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। इस उम्मीद में कि बैक टू स्कूल के लिए बच्चे तैयार हैं और मिर्ची की पार्टी में आने के लिए बेकरार हैं, जल्दी जल्दी अपने बच्चों का नाम, उनका एज 5001896 पर भेजिए, ताकि हम आपको वो लिंक भेजते रहें जिससे आप हमारी पार्टी के लिए रजिस्टर कर पाओ। यस, बैक टू स्कूल मिर्ची की रिचार्ज पार्टी इज ऑल सेट। आप अपने बच्चों के नाम भेजते रहो 5001896 पर, एंड वी विल टेक देम टू द झिंगाट पार्टी। एंड गाना वहां यही वाला चलाएंगे, 89.6 मिर्ची वन से मी सिंह टटरबैल लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से ढेर सारी एनर्जी मस्ती और भरपूर खबरों के साथ यही मिर्ची पर। तब तक हबीबी मां सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: राखी सावंत, हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं। उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। इस काउंटडाउन की शुरुआत ही आज एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाना नंबर 10 पर डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे। एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप। इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
5: Number 10.

0: The man, the myth, the legend, Sanjeev Rathod ki awaz. That was Bangles. Pichle hafte se do pudusha DJ drop hoke. This week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao. Mere saath connect karo. Koi gaana share karna ho. Bindas aake hit me up. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं उसकी इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ. आपको बताना है कौन से वाला गाना है. इट्स अ हाई बीट वन. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे आके बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए वी विल प्ले वन ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन, अगले वाला गाना ज़ारा खान स्केल्स का मूव बॉडी. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8.
4: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Kaun?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है।
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहा
4: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है आपसे।
4: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू,
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: गर्वित प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है. हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: तेरी दीवानी, दीवानी.
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है. मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है. सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ. सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s. दिस सॉन्ग रिमाइंड अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम. एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी ठुमका वो अंदाज. गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है. इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है. एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है. बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर है इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर. अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम. सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय इट.

0: डूड, ये गाना सुन के ही मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: एक्सलेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है शीशा। 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है। इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स। माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गुच्ची। गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान। एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं। बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है। एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था। एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक। उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई। पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं। आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी। एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट, जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा। सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: How can you listen to this song and not start doing that step, man? Arup Khan ki awaaz mein, that was Gucci on our special shout out this week. And agar aapko nahi pata ki main kaun se step ke bare mein baat kar rahi hu, to aap kahan hain, aapke charan kahan hain? Oh my god, internet aap tak pahunch nahi pa raha hai, aapka peace kitna protected hai. So mad respect to you, par gana bahut acha hai, so you will keep coming back to it. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. हर्ष नसी की आवाज, हर्ष नसी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.
2: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लो

0: अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Delhi Belly, Jalsa, Brown jaise content ke creator. मिस्टर अभिनय देओ
4: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
5: वेट
4: टेल
5: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाली है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट इज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब film imagine no but why and he was a filmmaker an actor himself
3: Abhinay Deo the director is talking about his father Ramesh Deo one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen aap sun rahe hain Mirchi it's hot
1: Bollywood Bordal Bollywood Bollywood Bollywood Bordal
2: only on Mirchi it's hot

0: हेलो हाय, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची
1: कैफे।
0: जी हाँ, शो शुरू हो गया है, वो वक्त आ गया है जब मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिल वाले डेप्थ वाले गाने लेकर मैं आपके लिए आ जाती हूँ। और अभी जो आपने गाना सुना बैरागी अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर की आवाज में, दिस इज फ्रॉम द फिल्म बरेली की बर्फी। अगर आपने देखी है, आई एम श्योर बरेली की बर्फी एक ऐसी फिल्म है जो मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसको वो पसंद नहीं आई हो। सो यहाँ द क्यूटनेस ऑफ द फिल्म, द राइटर, द पोएट जिसका वो कैरेक्टर निभाते हैं, आयुष्मान खुराना, राजकुमार, द एक्टिंग, द वे कृति सैनन हैज लुक्ड अमेजिंग। नहीं, चलो हम पोएट से आते हैं एक ऐसे पोएट पर, एक ऐसे शायर पर जिनकी लिखी हुई हर लाइन ऐसे दिल में उतरती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ कुछ लाइंस बोल के दिखाती हूँ, गेस करो कि ये किसने लिखी हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या फिर और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, या फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और ये अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये भी ओरिजिनली फैज अहमद फैज साहब ने लिखा है। यस, और इसका एक विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म हैदर में एक रेंडिशन लेकर आए थे जो कि अरिजीत सिंह ने ही गाया था। एंड अगर आपने ये गाना हैदर में सुना था या बहुत दिन से नहीं सुना है, या ये जो गजल बहुत पुरानी है आपने नहीं सुनी है, आज आप इसको सुनकर मुझे थैंक यू जरूर बोलने वाले हो। नंबर है मेरा 7045983983, मुझे हाई लिखकर भेजो, लेट्स कनेक्ट। ऑल्सो इंस्टाग्राम पर मैं मिलूंगी आपको paruls.world, PARULS.world। कनेक्ट करते हैं, साथ साथ शो के मजे लो, बढ़िया बढ़िया गाने सुनो एंड कनेक्ट विद मी। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। बाय गॉड, इस गाने को सुनकर दिल खुश होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burka, burka. Na vidvala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता हूँ,
3: ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
4: रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: आप बहुत सारे गानों में ऐसे नोटिस करोगे कि जो सिंगर होते हैं ना, जैसे इसमें सोनू निगम ने किया है, सो ही स्टार्ट्स लाइक धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना, उसके बाद एक वर्जन आता है धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना, द वे ही यूजेस उनके गले के बिल्कुल यू नो अंदर से आती हुई आवाज, एंड देन थोड़ी सी हाई पिच, ये जो पिचेस में स्विच करना होता है ना भाई, ब्यूटी.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और ये यू नो पहली फिल्म से धीरे जलना, आपको पता है इसके जो कंपोजर हैं MM करीम, उन्होंने बताया था कि तेलुगु फिल्म थी ओकारी की ओकारू, और जिसका गाना था नादिर दिना, उसका एक वर्जन इन्होंने हिंदी फिल्म के लिए क्रिएट किया था, साउथ से लेकर आए थे इस गाने का ट्यून, एंड देन उसको दूसरी पोशाक पहना के दिस सॉन्ग हैपेंड, एंड शाहरुख खान एंड पहेली, व्हाट अ फिल्म, व्हाट गूज बम्स दिस सॉन्ग गिव्स मी. तो ऐसे होता है, मैं एक दिन सोच रही थी बैठ के कि जिस तरीके से हमारे डिफरेंट कपड़े होते हैं ना, कपड़े एज इन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, कपड़े एज इन हम जो चेहरे पे नकाब पहन के घूमते हैं, हमारे जो बहुत सारे वर्जन्स हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए हम अलग हैं, फ्रेंड्स के लिए अलग हैं, कोलीग्स के लिए अलग हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, और फिर एक आता है खुद का वर्जन, एक होते हैं जो हम खुद के साथ होते हैं, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक फिल्टर फ्री होते हैं. हम भी एक पहेली से कम नहीं है ना लाइफ में. कितने सारे पहलू लेकर चलते हैं हम एक साथ में. वेल मूविंग ऑन, अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन सोनू निगम की आवाज में है, लेकिन आप इस गाने को सुन के फील करोगे कि सोनू निगम की आवाज के भी कितने सारे पहलू हैं, कितने सारे ऐसे अलग अलग अंदाज लेकर चलते हैं सोनू निगम. एंड अबाउट दिस सॉन्ग, रवि शेरगिल ने कंपोज किया था एंड सोनू निगम से गवाया था. इट्स अ अमेजिंग ट्रैक, सुनो इसको, मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, स्टे ट्यून्ड. It's hot.

0: यार मुझे लगता है ना, आई एम ग्रेजुअली फॉलिंग फॉर दिस गाइज वॉइस. कितनी प्यारी आवाज है इस इंसान की जिसका नाम है निखिल डिसूजा.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पार्लर के साथ. वेलकम बैक. अगर आपने वो गाना सुना है ध्वनि भानुशाली के साथ, यू नो वास्ते जा भी दूं, ठीक है, या फिर आपने अमित त्रिवेदी वाला वो गाना सुना है निखिल डिसूजा की आवाज में, शाम भी कोई जैसे है नदी, या फिर आपने यू नो अक्षय कुमार वाला बॉस फिल्म का वो गाना सुना है हर किसी को नहीं मिलता, या फिर ये गाना जो मैंने आपको अभी सुनाया मेरे बिना फ्रॉम द फिल्म क्रूक. यार दिस गाय इज डेफिनेटली डूइंग समथिंग मैजिकल और मजा आ रहा है इनके गाने सुनने में. वेल, अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये थोड़ा सा पहले का लेकर आई हूँ. कुणाल गांजावाला इज द सिंगर का नाम. और आपको पता है इस फिल्म से फुल फ्लेजेडली संजय लीला भंसाली का एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर करियर फ्लरिश हुआ था. द फिल्म वॉज कॉल्ड गुजारिश. और देखो यार, अगर आप संजय लीला भंसाली फैन हो, उनकी फिल्मों को एक तरफ रखते हैं, उनके म्यूजिक को भी एक तरफ रखा जा सकता है, विच इज अमेजिंग पहलू अबाउट हिम. संजय लीला भंसाली की जितनी भी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने फुल फ्लेजेड म्यूजिक दिया है, आपको एक अलग फ्लेवर दिखेगा. और उन्होंने यू नो शुरुआत भी इसलिए की थी म्यूजिक देने की क्योंकि उनको लगता था कि जब वो अपने किसी कंपोजर को बता रहे होते थे, सो द थिंग द फील वॉज लॉस्ट समवेयर इन ट्रांसलेशन. तो इसलिए उन्होंने खुद के ऊपर सिर्फ विश्वास करना शुरू किया और खुद अपने गाने लाने का डिसाइड किया इन द फिल्म्स. सो गुजारिश फिल्म का ये गाना जो अगला मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, 100 ग्राम जिंदगी. दिस इज यू नो लिरिकली म्यूजिकली इट्स अ मैजिकल सॉन्ग. सुनो इसको मिर्ची कैफे पर, आप हो पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सोनी रजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
3: डिफिकल्ट वन.
4: स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन.
5: सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस. दैट्स व्हाट यू टेल मी. सो क्या बोलूं आपको?
2: सोनी रजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: यार हम सारे लोग ना जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, कुछ लोगों के पूरे हो पाते हैं, कुछ लोगों के नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब किसी आर्टिस्ट का ड्रीम पूरा होता है ना अपने मेंटोर के साथ गाने का, दिस वॉज वन ऑफ सच सॉन्ग्स कॉल्ड बनारसिया
1: मिर्ची कैफे।
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आपको पता है अन्वेषा एक स्टार वॉइस टाइप के एक प्रोग्राम में आती थी टीवी पर, और उनके मेंटोर होती थी, जज होती थी श्रेया घोषाल, और इस गाने में अन्वेषा को मौका मिला श्रेया घोषाल के साथ गाने का, इन द एक्चुअल प्लेबैक इन द सॉन्ग। एंड मैं अगर सोचती हूँ ना मेरे को गूज बम्स हो जाते हैं, बिकॉज यू नो समवेयर मेरे को भी बचपन से ऐसे सिंगर बनने की ख्वाहिश थी, और मैं इतने सारे सिंगर्स हैं जिनको आइडलाइज करती हूँ और सोचती हूँ कि अब भी शायद कोई सुन ले और मुझे कोई गाने का मौका दे दे प्ले बैक के लिए, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर ये होता है ना कि हमारे अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, और जिस दिन हम उस स्टेज पे खड़े होते हैं जहाँ पर हमारा वो ड्रीम आसपास आ रहा है या पूरा हो रहा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट फीलिंग। और ये गाना बनारस या आपने सुना फ्रॉम द फिल्म रांझणा। रांझणा तो वैसे भी यार एक डिफरेंट लीग की फिल्म थी, क्या गजब फिल्म थी। और ऐसी ही एक गजब फिल्म थी जिसका नाम था रिफ्यूजी। 2000 से मैं ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप बिलीव करोगे, अनु मलिक को इस फिल्म के गाने के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए 48th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, एंड जहां तक मुझे याद है द ओनली नेशनल अवार्ड फॉर म्यूजिक डायरेक्शन इन हिज करियर। अगर आपने रिफ्यूजी के सारे गाने नहीं सुने ना, मतलब यार तुम कोई भी गाना उठा लो, पंछी नदिया, मतलब अमेजिंग लेवल के गाने। और जिस तरीके से कई लोग अनु मलिक साहब को सिर्फ आग लगा दी के लिए याद रखते हैं, ब्रो यू डोंट नो उन्होंने एक्चुअली आग लगाई थी अपने म्यूजिक से, एंड व्हाट अमेजिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक दिस फिल्म हैड। सुनो इस गाने को, मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
1: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: जब तक मैंने ये गाना नहीं सुना था या ये फिल्म नहीं देखी थी, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि कोई एक पीस ऑफ बर्फी को एक चांद से कंपेयर कर सकता है। स्वानंद किरकिरे, हैट्स ऑफ टू यू।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बर्फी के टुकड़े सा चांद देखो आधा है, धीरे धीरे चखना जरा, हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, कनखी से तकना जरा। डू यू नो व्हाट इज कनखी? कनखी इज आंखों का कोना, ऐसे तिरछी निगाहों से तको यार, अनबिलीवेबली मैजिकल। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये जो अरिजीत सिंह, स्वानंद किरकिरे, प्रीतम का मैजिकल कॉम्पोजिशन है फ्रॉम द फिल्म बर्फी, आई कैन नेवर forget this song ever. चलो well, अब मैं आपको जो अभी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको एक टास्क देने वाली हूँ। जल्दी से आंखें बंद करो अपनी, अगर ड्राइव कर रहे हो तो मत करना प्लीज। अगर आप घर पे बैठे हो या बाजू वाली सीट पे बैठे हो, अपनी आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी इमेजिन करो वो तीन लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। क्या इमेजिन? आपको बताए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 88% लोग उन तीन लोगों में अपने आप को नहीं याद करते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत पैशनेट तरीके से ना, हम खुद से तो प्यार करते ही नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं 88% लोगों में से आती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी मैंने भी अपने आप को याद नहीं किया था। एंड क्यों मैंने आपसे ये एक्टिविटी करवाई? क्योंकि अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बेकरां इस गाने का नाम है, फ्रॉम द फिल्म सात खून माफ। विशाल भारद्वाज ने खुद ने ये गाना गाया है, और जब आप इसकी इंटेंसिटी इमेजिन करोगे ना आंखें बंद करके, वो खुद भी कह रहे हैं लिरिक्स में, तो आपको लगेगा यार कैसे ये लोग ऐसा लिखते हैं, कैसे ये लोग ऐसा गा देते हैं। तो मैं बस अब आपके और इस गाने के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती, जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग। मुझे जरूर हाई लिखकर भेजना इस गाने के बाद। नाम है मेरा पारुल, मिर्ची कैफे सुन रहे हो आप। 7045983983 इज माय नंबर। इंस्टाग्राम पे paruls.world। सुनो इस अल्टीमेट गाने को, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। चुनो, मैंने तो तुझसे
1: वाली बातें कर रहा
2: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: नेहा भसीन की आवाज ने आपको मस्त मलंग डेफिनेटली किया होगा। आपको पता है धुनकी ये जो वर्ड है, अगर आप इसका गूगल मीनिंग ढूंढोगे तो इसका मीनिंग होता है अ बो शेप्ड टूल जो कि कॉटन को क्लीन करने के काम आता है। ओके, लेकिन मेटाफोरिकली एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड अपनी खुद की ही धुन में जो लगा रहता है, जो बिल्कुल ऐसे फ्री स्पिरिटेड पैशनेट इंसान होता है, केयर फ्री होता है, वो कहलाता है कि धुनकी लग गई उसको तो यार ही, कि अपनी धुन में लगा हुआ है इंसान।
1: मिर्ची कैफे,
0: ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और धुनकी वर्ड और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे ये याद आता है कि जब हम छोटे होते थे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें हमारी धुन लग जाती थी, फिर हम वही करते रहते थे। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो किसी एक्टिविटी में, खेल कूद में, डांस में मगन रहता है, अपना एंजॉय करता रहता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल गैजेट वी हैव इन आवर हैंड्स, हमारी सारी जिंदगी का वक्त ही उसमें धुनकी में जा रहा है क्योंकि हम उसी पे लगे रहते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग में। तो गाइस यार, हैव सम रिज, कम ऑन, किसी तो ऐसी चीज की धुनकी लगाओ ना जो आपको भी खुशी दे। इंस्टेंट डोपामाइन्स को लात मारो, खुश रहना सीखो, असली खुशी। ओके, वेल अगला गाना आपके लिए आ रहा है अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में, एंड यू नो व्हाट, इसमें जो इंग्लिश वाले लिरिक्स हैं वो खुद करीना कपूर ने गाए हैं। चेक आउट दिस सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.

0: पता है ये जो गाना है ना उसकी मेरी एक बहुत ही कोर मेमोरी है जो मेरे दिल में बसी हुई है। तो ये जब गाना आया था तो बहुत ऐसा फैशन था कि सब लोग अपने अपने फोन्स पे ऐसे डायल टोन्स लगाते थे, मतलब अगर मैं किसी को फोन कर रही हूँ तो मुझे एक गाना सुनाई देगा, और बहुत वक्त तक मेरे पापा की उस टोन में ये गाना था। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल माय फादर वो गाना बजता था, मैं यहाँ हूँ यार, एंड आई फेल्ट सो गुड जब मैंने ये गाना बहुत दिन बाद सुना।
1: मिर्ची कैफे।
0: Well, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आप इमेजिन करो एक इंसान है, एक शख्स है, ठीक है, 1998 की फिल्म कयामत से कयामत तक के ट्रैक पापा कहते हैं से सुपर सक्सेस मिली। एक ऐसे मेल सिंगर हैं वो इकलौते जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं अक्रॉस डिस्टिंक्ट डेकेड्स, 80s, 90s, 2000s, वो जीते ही जा रहे हैं। 25,000 गाने गाए हैं उन्होंने अक्रॉस 36 लैंग्वेजेस। यार इस आदमी के लिए ना स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, द मैन कॉल्ड उदित नारायण। अरे क्या मतलब आवाज है इनकी भाई, गजब। खुद ही कहते हैं ना ये डैश क्या गाया है मैंने। अब वो डैश वाला वर्ड मैं बोल नहीं सकती इसलिए मैं बोल नहीं रही, बट ही इज अल्टीमेट यार। Hats off to the amazing singers we have जो हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, just because you know कुछ गाने सुनकर हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और एक स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाती है। Well, एक और ऐसा ही गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की आवाज में। ये है एक प्यार की कहानी, सुन के आओ इसको, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा।
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
5: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: रात भी कुछ कह देगी, चांद भी कुछ कह देगा, लेकिन ये लोग ना सिर्फ तभी आपसे बात करते हैं जो एंटायर नेचर होती है, जब आप उसके लिए रेडी होते हो, स्पेशली जब आप प्यार में होते हो, तो ऐसा लग रहा होता है कि सब आपसे ही बात कर रहे हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये वो मोड़ आ गया है जहां पर मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो द शो गेट्स ओवर, और उसके बाद मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी। आप जरूर से नोट करके रखो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा paruls.world, मेरी दुनिया, ओके, माय वर्ल्ड paruls.world, और नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 7045983983, उसको भी नोट करके रखो। प्लीज मुझे बताओ आपको ये शो कैसा लगता है, आप मुझे गाना प्लीज बता सकते हो कि आपको कौन सा है, जैसे अच्छी फीलिंग वाले गाने, गुड वाइब डेप्थ वाले गाने मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सजेस्ट करो ना कौन सा और गाना सुनना है आपको। और मैं आज आपको छोड़ के जाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताकर। मैंने रिसेंटली पढ़ा अबाउट फॉकलैंड्स लॉ। आपने कभी फॉकलैंड्स लॉ के बारे में सुना है? जस्ट लिसन टू दिस, ओके, आराम से। इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन, इट इज नेसेसरी नॉट टू मेक अ डिसीजन। अगर कोई जल्दबाजी नहीं है किसी डिसीजन को लेने में, तो ये जरूरी है कि आप वो डिसीजन तब ना लें। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसके बारे में और पढ़ना फॉकलैंड्स लॉ के बारे में, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस क्योंकि हमने ये सोच लिया और हमें डिसाइड करना है तो हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। नेवर डू दैट, गिव योरसेल्फ सम स्पेस एंड टाइम यार, थोड़ा तो सब्र अपने आप को दो, सोचना इस बारे में, ओके? सो इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ डिसीजन, डोंट टेक इट। बहुत इंटेंस बात है, आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे यू नो हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं और फिर वही हरकतें करने लगते हैं जो हमें शायद नहीं करनी थी। वेल, अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ये एक बहुत ही प्यारा मोहब्बत से भरा गाना है, सुनो इसको। और हाँ, मुझे जरूर लिखना इंस्टाग्राम और नंबर पे जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप वाला, एंड डू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनते रहो मिर्ची, बिकॉज इट्स हॉट। मैं हूँ आपके साथ पारुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और बचपन में वो प्रेयर नहीं गाते थे हम लोग, वो गाना गाते थे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। बिल्कुल, ये इतना इम्पोर्टेंट ख्याल है बड़े होके पता चला कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना पहले तो बड़ा जरूरी है। अमीन हजीन साहब का शेर है जो आपको सुना रहा हूं, कहते हैं कि तुझको तेरी ही आंख से देख रही है कायनात, तुझको तेरी ही आंख से देख रही है कायनात, बात ये राज की नहीं, अपना खुद एहतराम कर, अपनी इज्जत खुद करो, उसके बाद जो कायनात है वो इज्जत करना शुरू करेगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है आप खुद के साथ जैसा बिहेव करते हो। तुझको तेरी ही आंख से देख रही है कायनात, बात ये राज की नहीं, अपना खुद एहतराम कर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nabil bala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: Hello Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
4: अच्छा तो दुबई जाना है.
3: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने सही कह रहा
4: है. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
3: नहीं बोलना.
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है आपसे.
4: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
3: सॉरी.
4: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा है बस. सेफ फ्लाइट.
3: ओके.
4: आई लव यू.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स ऑल डाउन एंड डन इज़न्ट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट. दे नीड 12 रन्स टू विन.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका दाशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर हैदराबाद दक्कन के पुरगो शायर अहमद हुसैन माइल साहब से। इनका जन्म अराउंड 1857-1858 में हुआ, डेट इतनी क्लियर नहीं है। 1914 में ये हमारा साथ छोड़ के चले गए। बट व्हाट अ शायर दोस्त, क्योंकि इन्होंने ना बड़ी ही सख्त और मुश्किल जमीनों में शायरी की, मतलब ऐसे मीटर्स में लिखा जिसमें लिखना बड़ा मुश्किल था, है ना। अब जैसे उनके ये शेर देखें आपकी, दूर से यूं दिया मुझे बोसा, बोसा मतलब किस, दूर से यूं दिया मुझे बोसा, होठ की होठ को खबर ना हुई। अब बताइए मतलब कितना बारीक शेर है। अब अगला शेर देखें कि प्यार अपने पे जो आता है तो क्या करते हैं प्यार अपने पे जो आता है तो क्या करते हैं, आईना देख के मुंह चूम लिया करते हैं, एज सिंपल एज दैट। और भाई मैं तो कह रहा हूं, सेल्फ लव को प्रदर्शित करने के लिए इससे बेहतर शेर तो और कोई हो ही नहीं सकता कि प्यार अपने पे जो आता है तो क्या करते हैं, आईना देख के मुंह चूम लिया करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, दैट वॉज द ग्रेट अहमद हुसैन माइल साहब। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

डेंटल सेंटर, हर स्माइल हो परफेक्ट, सिर्फ नसीम डेंटल के साथ। विजिट करें मुंतजा या अजीजिया, योर ट्रस्टेड स्माइल पार्टनर। Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Just

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपके दाशी आपके साथ। और कभी कभी ना आर्टिस्ट होना, आर्ट बनाना अपनी जिंदगी में, ये सबब भी लाता है कि आप अपना दुख, आप अपना पेन जो है अपने आर्ट में डाल के लोगों को सुनाते हैं और लोग उस पर वाहवाही करते हैं, है ना। तो शायद अजीमाबादी साहब का ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि सुन चुके जब हाल मेरा लेके अंगड़ाई कहा, मतलब अंगड़ाई ले रहे हैं, सुन चुके जब हाल मेरा लेके अंगड़ाई कहा, किस गजब का दर्द जालिम तेरे अफसाने में था। मजा आ गया है ना वैसा वाला सीन कि यार क्या तो तुमने दर्द सुना दिया। ये नहीं सोच रहे कि ये गुजरी है मेरे साथ, ये घटा है मेरे साथ, मैं किस हाल में होऊंगा। सुन चुके जब हाल मेरा लेके अंगड़ाई कहा, किस गजब का दर्द जालिम तेरे अफसाने में था। तो आर्टिस्ट को कई बार ये सुनना पड़ता है, कई बार ये महसूस करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी का फलसफा यही है दोस्त, आर्ट क्या कहते हैं, आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। सुनने वाला कोई ना हो तो गाने किसके लिए बनाओगे, है ना, शायरी किसके लिए लिखोगे। तो इसीलिए जितना जरूरी आर्ट है उतनी जरूरी उसके सुनने वाले और उसके चाहने वाले। स्टेडियम डुमिर्ची ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया सीरियसली? कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है।
0: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पे अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का नगमा आपके लिए और इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स यार क्योंकि जगजीत जी की आवाज है इसमें लेकिन जिस शख्स ने इसे लिखा है गुलजार उनका जब जब जगजीत जी के साथ एक कॉम्बो हुआ है कुछ ना कुछ धमाकेदार कुछ ना कुछ दिल को सुकून देने वाला निकला है उससे नतीजतन तो ये नगमा भी उसी की पैदाइश है पेशे खिदमत है आपके लिए शाम से आंख में नमी सी नजर करे आज का नगमा आपके लिए और इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स यार क्योंकि जगजीत जी की आवाज है इसमें लेकिन जिस शख्स ने इसे लिखा है गुलजार उनका जब जब जगजीत जी के साथ एक कॉम्बो हुआ है कुछ ना कुछ धमाकेदार कुछ ना कुछ दिल को सुकून देने वाला निकला है उससे नतीजतन तो ये नगमा भी उसी की पैदाइश है।

वाह जी वाह, इसका एक और शेर बड़ा पसंदीदा है मेरा, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर, सिंपल है।
2: I'm joking.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी आपके साथ। और पता है, शायरी में सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं होती है ना, शायरी में कई सारे जीवन के फलसफे भी होते हैं, जीवन के लेसन्स भी होते हैं। और जीवन का एक लेसन जो मुझे लगा है कि शायरी ने मुझे दिया है, वो है कि इतना लोड मत लो यार। जो तुम्हें लग रहा है दर्द सिर्फ तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो कई सौ लोग एक्सपीरियंस करके, हजारों लोग एक्सपीरियंस करके जा चुके हैं इस दुनिया से। और लाइट ले लो, मतलब ऐसा वाला सीन है। अमीर मिनाई साहब का एक शेर सुनाता हूं मैं आपको। कहते हैं कि उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, मतलब उल्फत मतलब प्यार, उसमें बराबर है कि कोई वफा कर जाएगा, कोई धोखा जफा कर जाएगा, है ना, अत्याचार कर जाएगा आप पे, ठीक है। तो उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, है ना। कुछ भी आ जाए जीवन में, अगर आप लाइट ले रहे हो ना, तो आप उसको कन्वर्ट कर ले जाओगे मजे में। एज इन दुख भी आ गया तो आप बोलोगे अरे यार शायरी का कॉन्टेंट मिल गया, गाने का कॉन्टेंट मिल गया। दुख में भी ना कभी कभी दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है, कंटेंट मिल जाता है। इसीलिए टेक इट लाइट और अमीर मिनाई का ये शेर याद रखे कि उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Navirvala, burga. Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना हम। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आके ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने पहले इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
4: अरे यार
3: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना सुनील जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
4: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आपका ताशी आज की कविता करे आपके नजर आज के कविता कॉर्नर में। बिल्कुल जी, नरेश सक्सेना साहब की इतनी खूबसूरत कविता लगी आ रही है मुझे, इतना वापस बैक टू रियलिटी खींच लेती हैं कुछ कविताएं जब आप उन्हें सुनते हैं। नरेश जी लिखते हैं कि दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, कितनी कीले ठुकी हुई पर ऐठ रहा है। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, हम सबके अंदर एक इंसान होता है जो कि वो अडल्ट नहीं होता जो जिंदगी जी रहा होता है, और हम समझते हैं कि वो इंसान दबाने से दब जाएगा, छुप जाएगा, वापस बाहर नहीं आएगा। लेकिन असली जो नेचर है, जैसे दरवाजे को अपना पेड़ होना याद आता है, वैसे ही हर इंसान को अपना असली नेचर कभी ना कभी तो याद आता ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपके दाशी है आपके साथ। और लोगों के जहन में ना जो रेलेवेंस होती है किसी चीज की, वो तभी तक रहती है जब तक उन्हें उस चीज का काम रहता है। फॉर इंस्टेंस, अब आप देखें, स्कूल की जो एक चमक थी, है ना, स्कूल की जो एक बात थी, मैं अपने स्कूल गया था रिसेंटली, यार बिल्डिंग वही थी लेकिन वो बात नहीं थी। फिर मुझे वापस ड्राइव करते हुए ये रियलाइज हुआ ना कि इट वॉज नेवर द स्कूल, वो तो जो लोग थे, जो दोस्त थे, जितने लोगों को जानते थे, उनकी बात थी। शहाब जाफरी साहब का शेर मुझे दिखा इस पे बड़ा सटीक, कहते हैं कि पांव जब सिमटे तो रस्ते भी हुए तकिया नशी। मतलब जब हमने पांव सिमेट लिए तो रस्तों ने भी तकिए लगा लिए, है ना। पांव जब सिमटे तो रस्ते भी हुए तकिया नशी, बोरिया जब तह किया दुनिया उठाकर ले गए। और होता भी ऐसी है कि जब आपकी नजर में किसी चीज का रेलेवेंस गिर जाता है ना, तब आपको लगता है कि यार दुनिया में भी उसका क्या ही रेलेवेंस है ना। स्कूल की जो बात थी वो तभी तक थी जब तक वहां पे आपके दोस्त थे, आपका एनवायरनमेंट, वो टीचर्स थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था। अब बिल्डिंग वही रहे लेकिन लोग बदल जाए तब भी समझ नहीं आता। पाव जब सिमटे तो रस्ते भी हुए तकिया नशी, बोरिया जब तह किया दुनिया उठा कर ले गए। As simple as that. Stay tuned to Mirchi Mehfil. Tashi aapke saath. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफ़े और कर दे आपकी नज़र। और रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक कोट दिखा जो कि बड़ा सही लगा। वो कोट में लिखा था कि हाउ कैन आई ब्लेम द विंड व्हेन इट वाज मी हु लेफ्ट द विंडो ओपन। इट वाज एज सिंपल एज दैट कि हवा की तो फितरत है भाई, अंदर रखे पन्ने उड़ा देना, दियो को बुझा देना। हाउ कैन आई ब्लेम द विंड व्हेन इट वाज मी हु लेफ्ट द विंडो ओपन। और मैं पलट रहा था पन्ने तो मुझे उबैदुल्ला अलीम साहब का एक शेर मिल गया एकदम एग्जैक्ट इसी पे। कहते हैं कि हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम। दोष मतलब जिस पे टिकाते हैं ना, जैसे कोई चीज़, जैसे फ़ोन टिक नहीं रहा होता है तो पीछे बॉटल रख देते हैं, तो वो दोष पे रखी हुई चीज़। हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। हाय हाय हाय, कितना सटीक थॉट है यार। कई बार जब ये थॉट समझ में आने लग जाता है ना कि जितने भी पंगे हुए कहीं ना कहीं हमारी ही ना समझी, हमारे ही कर्म थे जिनकी वजह से वो पंगे हुए, और क्या दोष देना उनको अब, तब लगता है कि यार मैं जाने दो, है ना। हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और देखो दोस्त, सच्ची बात यह है कि जिंदगी में आप टकराते तो कई सारे लोगों से हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं और जिनकी बातें आप जहन से लगाते हैं। अश्क रामपुरी साहब का ये जो शेर है, रामपुरी चाकुओं जितना ही तेज है, और कहते हैं कि बात में बात उसी की है सुनो तुम जिसकी, बात में बात उसी की है सुनो तुम जिसकी। यूं तो कहने को सभी मुंह में जबा रखते हैं, कितनी सटीक बात है भाई। अगर आप किसी की बात सुनी नहीं रहे तो फिर क्या फर्क पड़ता है वो क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर उसकी जबाँ भी है कि नहीं, है नहीं, क्योंकि आप बात सुनी नहीं रहे उसकी। लेकिन बात में बात उसी की है सुनो तुम जिसकी, यूं तो कहने को सभी मुंह में जबाँ रखते हैं। बहरहाल आप किसकी सुनते हो, सुनते रहना उनकी। Stay tuned to Mirchi Mehfil, बने रहे अपने ताशी के साथ। It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Rabana.
2: Burka, burka. Nafis bala burka.
3: Mirchi burka.
4: Hello.
5: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
4: Nahi, kaun baat kar raha
5: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
4: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
5: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
4: हूं। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
5: ओ मेरी बात
4: कौन
5: सुन।
4: बात कौन कर रहा है?
5: ओ महेश।
4: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
5: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
4: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
5: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
4: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
5: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
4: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
5: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
4: फिर वही बात को लेकर आ गया?
5: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
4: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
5: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
4: वाली बातें कर रहा
5: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
4: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
5: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
4: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
5: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
4: भाई तू है कौन?
5: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
4: हाँ रॉन्ग नंबर है।
5: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
4: राइट नंबर ले
5: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
4: अरे रॉन्ग नंबर,
5: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
4: यार।
6: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब महफिल में वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल।
1: आज के लव्स से आपको मुखातिब कराने का और आज का लव्स है जमीर। जमीर का मतलब होता है कॉन्शियंस, जिसको हिंदी में अंतःकरण भी कहते हैं। और कतील शिफाई साहब का ये शेर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स में से रहेगा जमीर के इस्तेमाल का। वो लिखते हैं, जागा हुआ जमीर वो आईना है कतील, सोने से पहले रोज जिसे देखता हूं मैं। और खुद का सामना जो इंसान कर पाता है ना, जो अपनी आंखों में बिना शर्म के, अपने गिरेबान में बिना शर्म के देख पाता है, उससे साफ दिल और कोई नहीं होता। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और मेरे ख्याल से औरतों को समझना हमेशा से काफी मुश्किल रहा है। हम लोग को लगता है ये कोई मॉडर्न फिनोमेना है या फिर आजकल ऐसा कुछ हो गया है कि आजकल के मर्द नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी साहब को पढ़ रहा था और उनका एक शेर दिखा मेरे को, है ना, कहते हैं कि लिपट भी जा न रुक अकबर, गजब की ब्यूटी है। लिपट भी जा न रुक अकबर, गजब की ब्यूटी है। नहीं नहीं पे न जा, ये हया की ड्यूटी है। हया मतलब शर्म ऑब्वियसली। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नहीं नहीं सीरियस वाला नहीं नहीं है और कौन सा नहीं नहीं में हया सिर्फ ड्यूटी निभा रही है, ये मेरा सवाल है ना। क्योंकि शेर तो बड़ा मजाकिया है और ऑब्वियसली इट शुड बी टेकन एज अ जोक। वो मजे मजे में ही कह रहे हैं, इट्स अ मिजाह वाला शेर कि लिपट भी जा न रुक अकबर, गजब की ब्यूटी है। नहीं नहीं पे न जा, ये हया की ड्यूटी है। अब लेकिन पता कैसे चले कि कौन सा नहीं नहीं सीरियस नहीं नहीं है और कौन सा नहीं नहीं हया वाला नहीं नहीं है। ऐसे पता तो लग जाता है मेरे ख्याल से, है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
4: मोस्ट मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
5: वेट
4: टेल
5: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट इज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
3: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है
9: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow No टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली मिर्ची महफिल पे जाने से पहले ये मौका है, ये दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का नगमा आपके लिए. और इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स यार, क्योंकि जगजीत जी की आवाज है इसमें, लेकिन जिस शख्स ने इसे लिखा है गुलजार, उनका जब जब जगजीत जी के साथ एक कॉम्बो हुआ है, कुछ ना कुछ धमाकेदार, कुछ ना कुछ दिल को सुकून देने वाला निकला है उससे नतीजतन. तो ये नगमा भी उसी की पैदाइश है. पेश खिदमत है आपके लिए, शाम से आंख में नमी

और इसी के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। इसी गजल का एक और शेर है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है और वही आदमी हम है। मुलाकात होगी हफ्ते के उस पार। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त जरा कंदरा उपचित भूषण पर प्रधान हो तो काकश्रेष्ठा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।